0: ही मेरा रब, तू ही मेरा सब, जो आके मैनू छू वो हवावा विच तू, दिल विच तू, साहा विच तू, मैं जित्थों मिलूंगा ना रहा विच तू। इको आ दुआ मेरी उस रब नू, मैं जिन्ने पल भी जीवा होवे पहा विच तू।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
3: कूल सॉन्ग।

धुरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: Pampanga's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Gio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
1: अभी बजाएगा ना भिड़ो।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। स्टेशन क्लॉक में 6:06 हो रहे हैं। ये है बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई कुर्सी की बेड़ी बांध लीजिए क्योंकि यहाँ पे हम उड़ान भरने वाले हैं। आज का दिन बहुत स्पेशल है। एक ही दिन में तीन दिनों को जो है हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो तीनों दिनों के बारे में बात करेंगे डिटेल में, उसके साथ साथ गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। देखिए वक्त बिताने का हमारा ये सिलसिला जो है शुरू होने वाला है। आप मैसेजेस का सिलसिला अभी शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे कि क्या हाल है, वीकेंड में क्या क्या किया, कैसे एंजॉय किया। डिटेल में मैसेज चाहिए मुझे 3311063 पर। और हर दिन की तरह मैं बार बार यहीं पे एक ही चीज याद दिलाऊंगा कि बाबू मुझाए मॉर्निंग सिर्फ गुड नाइट बिंदास होनी चाहिए।

0: बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। और बता दें कि आज म्यूजिक डे है, तो बहुत ही अलग तरीके के गाने जो है हम यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं। उसके साथ साथ आप रेडियो ऑलिव का जिंगल जरा ध्यान से सुनिएगा। जब आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा उसमें कुछ तो बदलाव है, कुछ तो चेंज है। वो क्या है मुझे बताइए उसके बाद। अभी फिलहाल और जो गाने आने वाले हैं थोड़ी देर में आपके रेडियो सेट में, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। बताने वाली बात देखो ये बिल्कुल यार हूं मैं, इसमें क्या बात है। मगर हम शो की शुरुआत करेंगे अरनान सामी के एक बहुत ही नए गाने से। एक सिंगल ट्रैक है, काफी चर्चित ट्रैक भी है, क्योंकि इसका जो वीडियो था उसके ऊपर भी बहुत डिस्कशंस हुए थे। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेप्ट भी किया था। उसके साथ साथ काफी नया एक सॉन्ग है उनके एक जॉनर में, ऐसा गाना कभी उन्होंने किया नहीं है।
1: लिपस्टिक लगा के नजर उतार ले।
0: और इस गाने के बारे में और भी बातें उन्होंने बताई है एक इंटरव्यू में सिमरन के साथ। आप रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज पे जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल यही बात बताते हुए जरा अदनान सामी आई ट्रैक सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
2: अरे यार, हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द जीसीसी। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: This is
5: Vani Bhanushali.
6: Hey, this is
7: Iliana
6: de Cruz.
7: This is me, Ritik Roshan.
8: Hi, I'm Alia Bhatt.
9: Hi, main hoon Vivek Anand Oberoi and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
10: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
11: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। These smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: सोनू के टीटू की स्वीटी मूवी का गाना हमने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 6:18 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है मेरे पास एक मैसेज आया है, एक ऑडियो नोट आया है, मैं वो ऑडियो नोट प्ले करना चाहूंगा। बहुत ही क्यूट ऑडियो नोट है, तो ये आप सब सुनिए जरा।
1: Myself David, Happy Father's Day. My father is my real hero.
2: Myself Bhumi, I love my father. Happy Father's Day.
0: Oh, thank you so much, Devan and Bhumi. मुझे बहुत अच्छा लगा ये ऑडियो उन्होंने भेजा था। आज फादर्स डे भी है और अपने फादर को फादर्स डे विशेस देने के लिए उन्होंने ऑडियो मुझे भेजा। थैंक यू सो मच देवन, थैंक यू सो मच भूमि, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड देवन और भूमि के पापा अगर आप ये सुन रहे हैं तो आप बहुत ही एक लकी फादर हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपका दिन जो है काफ़ी बढ़िया जाए। और जितने भी पापा लोग यहाँ पे हमें सुन रहे हैं, आप सभी को एक सुपर डुपर फादर्स डे। देखिए कई बार मुझे ऐसा लगता है कि पापा के साथ का जो एक डायमेंशन रहता है, एक रिश्ता जो रहता है, उसको ना लोग समझ नहीं पाते। वो बहुत गहरा रिश्ता है क्योंकि बिना बोले ही बहुत सारी बातें हम समझ जाते हैं। ठीक है, पापा की एक नज़र काफ़ी है, हमें समझ में आ जाता है कि ये करना है या नहीं करना है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है जो बाकी जनता को इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। और जितने भी पापा लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, मैं समझता हूँ कि यार देखिए, आप अपने लाइफ में अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए एक अच्छा लाइफ प्रोवाइड करने के लिए जी जान लगा रहे हैं। एंड व्हाट आई वांट यू टू टेल यू इज दैट आप लोग बहुत ही ऑसम हो, बहुत ही अमेजिंग हो, और जितनी भी मेहनत आप कर रहे हो उस सब रंग लाएगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच ऑसम फादर्स। और यही बात बोलते हुए हम और भी मैसेजेस जरा पढ़ लेते हैं, मेरे पास और भी मैसेज आए हैं। सतीश कुमार जी का एक मैसेज आया है और सतीश कुमार जी ने एक मैसेज लिखा है कि एवरी स्टेप टुडे वाज फॉर यू डैडी, सैक्रिफाइस, स्ट्रेंथ, सेल्फलेसनेस, हैप्पी फादर्स डे, मिसिंग यू ऑलवेज, गॉड इज ट्रूली अमेजिंग करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सही बात कही है, हमारे पापा जो हैं बिना बताए बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें बता देते हैं। एक्सप्लिसिटली बताते नहीं है कि ये करना है, वो करना है, वो अपने लाइफ के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू बहुत सारे लेसन्स जो हैं इम्पार्ट करते हैं। और उसके साथ साथ एक और मैसेज हमारे पास आया है, सब्यसाची का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है, हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, आई होप काफ़ी बढ़िया दिन जाए आपका। उसके साथ साथ मोहम्मद असलम भाई का मैसेज आया है, यहाँ पे लिखा है, मे यू बी हैप्पी, बी सेफ, बी वेल, हैव कम्फर्ट, हैव स्ट्रेंथ, हैव करेज, हैव पीस, हैव जॉय, मे यू बी ब्लेस्ड टुडे एंड एवरी डे, गुड मॉर्निंग करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आपको भी काफ़ी बढ़िया और प्यारा दिन हम विश करते हैं। जुल्फी भाई का मैसेज आया है और जुल्फी भाई ने लिखा है, Every day is special if you think so. Every moment is memorable if you feel so. Everyone is unique if you see so. Life is beautiful if you live so. Think positive and live happy. Celebrate life. Good morning करके। Thank you so much जी, thank you so much। आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन यहाँ पे हम विश करते हैं। शशिकांत पाटिल जी का भी मैसेज आया है और उन्होंने लिखा है, We can all fight against loneliness by engaging in random acts of kindness करके। Wow, thank you so much जी, thank you so much। आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन हम विश करते हैं। और नाजनी जी का मैसेज भी आया है और नाजनी जी ने लिखा है, Good morning, wishing you a beautifully bright and productive day ahead. May all your plans fall into place and bring a smile to your face. Thank you so much जी, thank you so much। आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन हम विश करते हैं। अभी फिलहाल यही बोलते हुए हम भी जरा अगला गाना प्ले करते हैं। वंस अगेन देवन और भूमि, थैंक यू सो मच ये ऑडियो नोट मुझे भेजने के लिए, फादर्स डे विशेष में मुझे भी एक हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और यही बात बोलते हुए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं, जियो बिंदास।
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: क्या बात है सर, क्या बात है।

0: सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर। कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
4: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। These smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहाँ पे स्टेशन क्लॉक में जो है वक्त अभी 6:32 हो रहे हैं। और मैं जरा बोल दूं कि भाई अभी ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में जो है एक सवाल पूछने का वक्त हो चुका है, तो तैयार हो जाइए जरा बहुत जल्दी जल्दी सवाल का जवाब देने के लिए।
1: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैकबोर्ड स्टोरीज।
0: चलिए आज एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, सवाल का जवाब आप जो है जल्दी जल्दी तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी जरा मुझे दे दीजिएगा। सवाल बहुत ही सिंपल है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये है मेरा सवाल। जल्दी जल्दी बताइए सवाल का जवाब क्या है। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं 3311063 पर, ऑडियो नोट भेज सकते हैं 3311063 पर, कॉल कर सकते हैं 4444106 पर। बताइए मुझे इस सवाल का जवाब क्या है। फिलहाल यहाँ पे अदनान सामी की आवाज में सलाम इश्क का एक गाना। स्टे ट्यून्ड, यह है रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑल एयर
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
0: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
4: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। These smiles anytime. For more information, call 4411 1133.
0: Radio Olive.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे जो है हमारे पास थोड़े मैसेजेस आए हैं। मुझे राहुल ने मैसेज भेजा है, एंटोइन लवियो शेयर करके इनका नाम है, आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया है, अगर गलत किया तो माफ कर दीजिए प्लीज। उसके साथ साथ मुझे वीएसआर मूर्ति जी ने भी यही जवाब भेजा है, और सरिता जी ने भी मुझे एक मैसेज भेजा है। सरिता जी ने मुझे दो ऑडियो भी भेजे हैं। सरिता जी, ऑडियो जो है डाउनलोड हो रहे हैं, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, वो डाउनलोड हो रहा है, जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा मैं प्ले कर दूंगा। उसके साथ साथ उन्होंने मुझे टेक्स्ट भी भेजा था, लिखा है कि गुड मॉर्निंग सुदेव जी, प्लेजर टू मीट यू यस्टरडे, आंसर इज एंटोइन लवोसिए एंड आई हैव डन माय स्टडी विद केमिस्ट्री। अरे वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मैंने सवाल पूछा था कि केमिस्ट्री के फादर कौन है, और बिल्कुल सही तरीके से जवाब दिया है सबने, तो सबके लिए बजेंगी तालियां। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी खुशी में एक काम करते हैं, एक साथ बैठकर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।

0: एंटरटेनमेंट की यहाँ कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग, इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस, सेव मोर ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन Call 4411 1133.

वेलकम बैक, यह है रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 7:07 हो रहे हैं और कोइंसिडेंस की बात यह है कि बाहर हवा भी 7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बह रही है, विच मीन्स ताला फॉर अ रीजन। भाई चलिए टेम्परेचर का हाल देख लेते हैं, 34 डिग्री सेल्सियस है, 3+4=2 ताला फॉर अ रीजन। ये 3+4 मेरे लिए ना बहुत ही नॉस्टैल्जिक नंबर है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि 11th क्लास के सेकंड यूनिट टेस्ट में मैथ्स में मेरे 7 नंबर आए थे, तो मैं तब से धोनी का फैन हूँ, तब से, ठीक है, हम उस टाइम से धोनी के फैन हैं। तो मेरी मम्मी मुझे उस दिन के बाद से हमेशा जब भी कोई कैलकुलेशन करने के लिए कुछ बोलती है ना, बोलती है यार तुझसे क्या पूछूं यार, 3+4=7 नंबर आए थे तेरे, तू क्या करेगा मैथ्स करके। एक बार फेल हुआ था मैं मैथ्स में, एक्चुअली 2 बार फेल हुआ था, एक बार यूनिट टेस्ट में भी फेल हुआ था और हाफ ईयरली में भी फेल हुआ था। उसके बाद फिर मैथ्स में कभी फेल नहीं हुए, उसके बाद फिर हमारा रिकॉर्ड काफी बढ़िया रहा है, मगर वो कोई देख ही नहीं रहा। एक बार तुम जिंदगी में फेल हो जाओ, सारी जिंदगी तुम्हें याद दिलाएगी ये समाज की भाई तुम ना उस दिन मैथ्स में फेल हुए थे। तो मैं यही बताना चाहूंगा लोगों की, देखिए हारने में कोई दिक्कत नहीं है, हारना जरूरी है, तब जाके जीत का स्वाद जो है हमें समझ में आता है। अभी फिलहाल मौसम का हाल कैसा है देख लेते हैं। 34 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है अभी, आज का हाईएस्ट जाएगा 44 डिग्री सेल्सियस एंड आज का लोएस्ट 34 डिग्री सेल्सियस ही है, विच सेज अ लॉट अबाउट दिस डे। और उसके साथ साथ मैं यही आपको बोलूंगा कि भाई हाइड्रेटेड रहिए, अच्छे से पानी वानी पीजिएगा और बाहर के नजारे मुझे जरा दिखाइए कैसा है बाहर, आपके लिए मौसम कैसा है। 3311106 पर मैसेज कीजिए और बताइए मुझे कैसा चल रहा है सब कुछ। फिलहाल यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲ ਆਫ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ.
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के.
5: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
6: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड. Smiles anytime. For more information, call 4411133.

यार आज के दिन का ना एक काफी अम्यूजिंग चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, फादर्स डे के दिन मदर के साथ कॉन्वर्सेशन हो रही है शादी के बारे में। मम्मी बोली है शादी कर, मैं बोला मैं करूंगा मगर अभी नहीं, टाइम नहीं आया है उसका। टाइम से आधा है, स्टेशन क्लॉक में अभी 7:17 हो रहे हैं और यहाँ पे बिल्कुल जैसे ही मैंने बोला कि भाई बताओ क्या हाल चल रहा है, मुझे ऑन टाइम मैसेजेस भी आए हैं। मुझे अनिल जी ने मैसेज भेजा है, उन्होंने बोला है कि गर्मी तो है सुदीप, क्या करें मगर जाना पड़ेगा। मैं भी यही बोलता हूँ लोगों से, जीने के लिए तो करना ही पड़ेगा, गर्मी है सर्दी है क्या फायदा, मगर अभी तो हम चाहते हैं कि यार थोड़ी राहत मिल जाए। और वैसे मुझे कल किसी ने बोला था कि पीक गर्मी तो आने वाली है, जब ह्यूमिडिटी भी शुरू हो जाएगी तब जो एक एक्सपीरियंस होगा हमारा वो तो अलग ही लेवल का होगा। तो मुझसे किसी ने पूछा कि आप तो सर्दी के टाइम पे आए थे ना दोहा शायद, मैंने बोला नहीं मैं पीक गर्मी के टाइम पे आया था, जून के टाइम पे आया था, तो मेरा तो ट्रायल बाय फायर हुआ था यहाँ पे अच्छा खासा। तो गर्मी से ऐसे डरते नहीं है, और हम तो दिल्ली में पले बड़े हैं भाई, वहां पे तो गर्मी तो

0: के लिए इससे बढ़िया दिन क्या हो सकता है, क्योंकि कंटेंट की कमी नहीं होगी, कंटेंट की कमी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि तीनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों दिन से रिलेटेड एक एक चीज जो है थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे म्यूजिक एंजॉय करते हैं, जबरदस्त हिट प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।
2: अभी बजाएगा ना भिड़ो।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑल एयर
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
3: Doctor on air. Brought to you by Naseem Healthcare.
4: I'm Dr. Faseel Abdurrahman, periodontist, working in Naseem Dental Center, Muntaza. Children's are the primary responsibilities, the caretakers, that is the parents or the grandparents. First dental visit always should be 6 months or when the first baby tooth erupts. That is the first thing that has to be taken care by the parent.
3: Doctor on air. Brought to you by Naseem Healthcare.
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
5: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
6: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। ये है बिंदास मॉर्निंग्स, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में अभी 7:31 हो रहे हैं और यहाँ पे भाई वक्त हो चुका है फिट है तो हिट है का।
1: फिट है तो हिट है,
0: मेरे मन में एक सवाल पनप रहा है। सवाल यह है कि क्या भूख जो है वो पेट से शुरू होती है? ये एक मिथ है वैसे, ठीक है, कि भूख हमेशा पेट से शुरू होती है। फैक्ट क्या है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग हंगर सिर्फ एक एम्प्टी स्टोमक की वजह से नहीं होता, ठीक है। असल में भूख को कंट्रोल करने में ब्रेन का बहुत बड़ा रोल होता है। ब्रेन हार्मोन्स, एनर्जी स्टेटस और डेली बॉडी क्लॉक से सिग्नल्स रिसीव करके डिसाइड करता है कि आपको कब खाने की जरूरत महसूस होगी। जब स्टोमक खाली होता है तो ग्रेलिन नाम का हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, जो ब्रेन को हंगर का सिग्नल भेजता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि भूख कभी कभी तब भी लग सकती है जब स्टोमक कंप्लीटली एम्प्टी ना हो। इसके रीजंस हो सकते हैं, खाने का रेगुलर टाइम हो जाना, फूड की स्मेल या अपीयरेंस को देखना, स्ट्रेस या इमोशंस, पुअर स्लीप, हैबिट बेस्ड ईटिंग पैटर्न्स। इसलिए कई बार आप मील के तुरंत बाद डेजर्ट देखकर फिर से खाने का मन कर मतलब वो लग कर जाता है, इवन दो स्टमक ऑलरेडी फुल होता है। ये ज्यादातर ब्रेन का एक रिवॉर्ड सिस्टम है और लर्नड हैबिट्स का एक इफेक्ट भी होता है। रिसर्च ये भी दिखाती है कि सर्कैडियन रिदम एपेटाइट को इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए कुछ लोग स्पेसिफिक टाइम पर नेचुरली ज्यादा हंगरी फील करते हैं। मोटी मोटी बात यह है, भूख सिर्फ पेट का सिग्नल नहीं है, ये ब्रेन हार्मोन हैबिट और बॉडी क्लॉक का एक कॉम्बिनेशन है। इसीलिए कभी कभी स्टोमक भरा होने के बावजूद भी हंगर या क्रेविंग्स फील हो सकती हैं। तो अब मुझे समझ में आया कि मुझे भूख क्यों लगती है। वाओ वाओ, नाउ आई गेट इट गाइस। और अभी एक बहुत ही प्यारा गाना हम आपके साथ जो है प्ले करके एंजॉय करना चाहते हैं। ए आर रहमान के म्यूजिक में ये गाना है, उन्होंने ही गाना गाया है। रांझाना मूवी का गाना है, तू मुंशदी गाना का नाम है और ये गाना काफी अलग है, काफी अच्छा है, अंडररेटेड बोलूंगा मैं। और आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है, तो म्यूजिक डे के दिन कुछ अंडररेटेड गाने भी एक साथ बैठकर सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन रूटीन केयर ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है कॉल 4411133 ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम
2: Jackman ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now. Football boundaries nahi janta. Aur Qatar ka culture koi limits nahi janta. Is World Cup, jab Qatari fans America pahunche, to unhone sirf match mein points nahi jeeta, balki sabka dil jeet liya. Apne traditional Qatari thob mein. फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया नो मैटर वेयर द गेम इज आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है कल्चर ट्रैवल्स फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
0: इन एसोसिएशन विद
1: नसीम हेल्थ केयर नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड हेल्दी Smiles anytime. For more information, call 4411133.

वेलकम बैक, यू आर लिस्निंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही बढ़िया एक खबर जो है हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। 30th दोहा थिएटर फेस्टिवल जो है वो शुरू हो रहा है आज से और 4 दिन तक चलेगा। फेस्टिवल को थिएटर अफेयर सेंटर ऑर्गेनाइज कर रहा है और इसमें अमेच्योर थिएटर ग्रुप्स अपने नाटक को जो है पेश करेंगे। कॉम्पिटिशन प्लेस इनमें होंगे, जैसे कि फेस्टिवल में 3 प्लेस जो है कॉम्पिटिशन के लिए परफॉर्म की जाएंगी। सबसे पहला है अंडर द रबल दोहा थिएटर ग्रुप का, इसके राइटर हैं यासर अल हसन और डायरेक्टर है फालह फाइज, और द डिवाइडिंग सिटी कथा थिएटर ग्रुप का राइटर है तालिब अलदोस और डायरेक्टर है मोहम्मद यूसुफ अल मुल्ला, और तीसरा प्ले है द ब्लैक हील, ये अल वतन थिएटर ग्रुप का है, इसके राइटर एंड डायरेक्टर शुएब अलकुवारी है। और उसके साथ साथ एडिशनल एक्टिविटीज के बारे में अगर हम देखें तो हर परफॉर्मेंस के बाद वर्कशॉप्स होंगी जहां क्रिटिक्स और थिएटर एक्सपर्ट्स प्ले पर डिस्कशन करेंगे, एंड फेस्टिवल की डेली बुलेटिन पेज पर जो है ये पब्लिश की जाएगी और थिएटर अफेयर सेंटर पे अपनी एनुअल फेस्टिवल बुक भी यहां पे रिलीज की जाएगी। और इस साल फेस्टिवल में 4 कतरी थिएटर पर्सनैलिटीज को ट्रिब्यूट दिया जाएगा, मोहम्मद अलबालम, तलाल अल सिद्दीकी, अहमद अब्दुल मालिक और खलीफा जुमान। तो ये बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, कोक स्टूडियो भारत का एक बहुत ही बढ़िया गाना सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: रिंग फॉर द न्यूली मैरिड क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
2: अरे यार हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो देयर इज मोर विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

भाषा कोई भी हो, म्यूजिक दिलों को दिलों से जोड़ता है। दिस वर्ल्ड म्यूजिक डे रेडियो ऑलिव के साथ सेलिब्रेट करो म्यूजिक जो भाषा से बंधा नहीं है।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million rials विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन call 4411133

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hi there friends, this is DJ Suketu.
5: DJ Suketu.
4: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
6: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
2: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

0: Anso day. स्टेशन क्लॉक में 8:19 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है बात करने का वक्त आ चुका है उस खेल के बारे में जो है ब्लॉकबस्टर।
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर।
2: In association with...
3: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
3: your trusted remittance partner.
0: तो चलिए भाई मैचेस के बारे में बात करते हैं। पहले मैं आपको जरा अपडेट दे दूं कि कल क्या क्या हुआ। कल काफी बढ़िया दिन था, 5 मैचेस हुए थे जिसमें स्कॉटलैंड वर्सेस मोरक्को में 1-0 से मोरक्को ने जीत लिया, ब्राजील वर्सेस हाइटी में 3-0 से ब्राजील ने मैच जीत लिया था, तुर्की वर्सेस पैराग्वे में पैराग्वे ने 1-0 से मैच जीत लिया, नेदरलैंड्स और स्वीडन के मैच में 5-1 से नेदरलैंड ने स्वीडन को हरा दिया, जर्मनी और आइवरी कोस्ट के मैच में 2-1 से जर्मनी ने मैच जीत लिया। आज जो है 2 मैचेस हुए सुबह, एक मैच अभी चल रहा है और उसके पहले एक मैच खत्म हो चुका है इक्वाडोर और कुरासाओ के बीच में, जिसमें 0-0 में जो है गेम एंड हुआ, ड्रॉ हुआ। ट्यूनिशिया वर्सेस जापान का मैच चल रहा है जिसमें अभी जापान जो है 2-0 से लीड कर रहा है। और आज जो है 2 मैचेस और हैं और वो 2 मैचेस कौन से, उनके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: कूल सॉन्ग
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
5: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
1: कूल सॉन्ग।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे. मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स. अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस. और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी. विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.
3: कमर्शियल बैंक. योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
4: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 8:32 हो रहे हैं और यहां पे जो है हम बात कर रहे थे उस खेल के बारे में जो है ब्लॉकबस्टर।
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर।
2: In association with
3: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
3: your trusted remittance partner.
0: देखिए, हम गेम के उस एक एस्पेक्ट में पहुंच चुके हैं जहां पे जो है धीरे धीरे गेम क्रूशियल होता जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप जो है क्रूशियल होता जा रहा है। अभी अगर हम पिछले दिन के मैचेस की बात करें तो ब्राजील और हाइटी के मैच में ब्राजील जीत गई और हाइटी जो है बाहर हो गई। एंड वी ऑल्सो नो दैट मेक्सिको जो है नेक्स्ट राउंड में जाने वाली सबसे पहली टीम बनी। और आज के जो मैचेस जो होने वाले हैं शाम को और रात को, स्पेन वर्सेस सऊदी अरेबिया मैच होने वाला है ग्रुप एच का, और ग्रुप जी का मैच होने वाला है बेल्जियम वर्सेस ईरान। स्पेन वर्सेस सऊदी अरेबिया अगर मैच के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ऑन पेपर ये मैच जो है स्पेन के लिए बहुत ही इजीली जीतने वाला एक मैच है। मगर यहाँ पे देखिए पिछले बार के वर्ल्ड कप में सऊदी अरेबिया ने जो है अर्जेंटीना को भी चौंका दिया था, ठीक है, पूरी दुनिया को चौंका दिया था हरा के। तो हम कह नहीं सकते कभी भी, बट मुझे लगता है कि स्पेन के लिए ये क्लियर विक्ट्री हो सकती है। मगर सऊदी टीम को मैं कहीं से भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा क्योंकि वो काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। बेल्जियम और ईरान की अगर हम बात करें तो क्लियर फेवरेट्स अगर हम ऑन पेपर देखें तो बेल्जियम लग रहा है, बट ऑन ग्राउंड के कंडीशंस कैसे हो सकते हैं, प्लेयर्स का एक माइंडसेट कैसा हो सकता है, वो भी बहुत डिपेंड करता है। ऑन पेपर देखें तो बेल्जियम की टीम जो है थोड़ी और अच्छी है और अच्छे प्लेयर्स उसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट लीग्स में खेल भी रहे हैं, तो एक काफ़ी अच्छा इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है ऑलरेडी बेल्जियम के प्लेयर्स को मिल रहा है। सो आई थिंक दिस मैच इज़ फेवर्ड टुवर्ड्स बेल्जियम, बट हम बोल नहीं सकते क्या हो सकता है एट द एंड। आपको क्या लगता है इन दोनों मैचेस में कौन कौन जीतने वाला है आप बताइए मुझे। 3311063 पर आप मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा गाना आपके लिए हम प्ले करेंगे अदनान सामी की आवाज में फ्रॉम द मूवी डार्लिंग।
5: सो

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
5: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो यार आज जो है म्यूजिक डे है, मैं म्यूजिक और टेक्नोलॉजी के बीच का जो एक तालमेल है उसके बारे में जरा बैठ के ऐसे सोच रहा था, तो मैंने रियलाइज किया कि म्यूजिक को कंज्यूम करने के तरीके जो हैं लोगों के वो बदल गए हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। जो है म्यूजिक को किस तरीके से हम कंज्यूम करते हैं वो रास्ते जो हैं बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। पहले ग्रामोफोन हुआ करते थे, बड़े बड़े ग्रामोफोन घर में रखे रहते थे। अगर आप रेडियो ऑलिव के स्टूडियो में आओगे तो ऑफिस के रिसेप्शन के वहां पे भी आपको एक ग्रामोफोन रखा दिखेगा, और उसके थ्रू लोग जो है डिस्क लगा के गाने सुनते थे। फिर वो बदल गया, फिर कैसेट्स आने लगे, और जब कैसेट्स आए तो एक चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड हुई थी, वो था वॉकमैन। मेरे को याद है जब भी हम वेकेशन के लिए जाते थे, मैं और मम्मी दिल्ली से ट्रिवेंड्रम जब हम जाते थे तो मम्मी ऐसे बहुत सारे कैसेट्स लेके रखती थी। और मेरे घर में पिछले मुझे लगता है 2 या 3 साल पहले जब मैं गया था तो साफ सफाई में एक बहुत बड़ा कवर भर के कैसेट पड़े हुए थे, पुराने फिल्मों के, जगजीत सिंह साहब के, बॉर्डर मूवी के, पुराने पुराने आइकॉनिक बॉलीवुड मूवीज के गानों के कैसेट्स पड़े हुए थे। तो जब भी हम ट्रैवल करते थे मम्मी ये कैसेट्स लेकर आती थी, बैग में रखती थी और ऐसे लगाती थी, और एक ईयरफोन जो है मेरे कान में और एक अपने कान में ला के बैठ के थ्रू आउट द जर्नी हम एंजॉय करते थे और गानों को, ठीक है। उसके बाद माध्यम चेंज हो गया, सीडीज आने लग गए और इवन रेडियो सेट्स में भी बहुत फर्क आने लगा, ठीक है। जो पहले प्योरली सिर्फ एक रेडियो सेट आता था उसमें एफएम फंक्शनैलिटी के साथ साथ कैसेट फंक्शनैलिटी आया, सीडी फंक्शनैलिटी आया। उसके बाद धीरे धीरे पेन ड्राइव के थ्रू हम गाने एक्सचेंज करने लग गए, वेबसाइट्स आने लगी जिसके थ्रू हम गाने जो है डाउनलोड कर रहे थे करते थे। एक बहुत ही फेमस वेबसाइट था songs.pk जिसमें से हम गाने डाउनलोड करते रहते थे। अब वॉकमैन में भी बहुत बड़ा एक एवोल्यूशन आया, एक बिल्कुल रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा रहने वाला वॉकमैन जो है एक पेन ड्राइव के जैसा छोटा हो गया। फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आए, आईपॉड आया एंड आईपॉड मिनी आया। म्यूजिक को कंज्यूम करने के तरीके बदलते गए और आजकल म्यूजिक स्ट्रीमिंग शुरू हो चुका है जहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म्स हमें उनसे पैसे लेते हैं कि भाई तुम पैसे दो और फ्री में गाना सुनो बिना ऐड के। तो ये तरीका मुझे समझ में नहीं आया। मुझे हर बार लगता है कि यार म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए यू शुड नेवर पे, क्योंकि वो यूनिवर्सली लोगों को एंजॉय करने के लिए, एक साथ लाने के लिए यूज करते हैं। एक बहुत ही बड़ी बात कही है उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने, उन्होंने बोला है कि दुनिया में 7 समंदर हैं मगर पानी एक ही है। सिमिलरली दुनिया में कहीं पे भी जाओ सुर 7 हैं, वो 7 सुर ही हर जगह यूज होते हैं। इसलिए इस पूरे दुनिया को यूनाइट करने लायक एक चीज है तो वो म्यूजिक है, और म्यूजिक की अहमियत कभी भी हमारी जिंदगी में कम नहीं होगी। और यही बात बताते हुए, याद दिलाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगले आवर में जब हम आएंगे तो फादर्स डे पे थोड़ा फोकस करेंगे, तो तैयार हो जाइए। यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. Apna hala recharge karo aur pao free data ya minutes ka surprise. Claim karo Ooredoo app par. Experience more with Ooredoo.
2: A ring for the newly married? Cute little bangle for the newborn?
3: Arey yaar, holiday season is here aur phir wahi gifting ka tension. फिर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस और सुनो देयर इज मोर विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिवीजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द जीसीसी विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है यहाँ हर चोट एक मेडल है हारना मना है और डरना गुनाह है यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं दिलों की धड़कन शोर करती है और ऑडियंस चीयर नहीं रोर करती है बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम इट्स एन इमोशन फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
1: In association with
0: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange.
0: Your trusted remittance partner.

भाषा कोई भी हो, म्यूजिक दिलों को दिलों से जोड़ता है। दिस वर्ल्ड म्यूजिक डे रेडियो ऑलिव के साथ सेलिब्रेट करो म्यूजिक जो भाषा से बंधा नहीं है।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई आज का दिन बहुत स्पेशल है, हम जानते हैं। आज तीन स्पेशल डेज जो है ऑब्जर्व करते हैं हम। आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, उसके साथ साथ आज जो है फादर्स डे भी है। और इन तीनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आज रेडियो ऑलिव के पेज को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है उसमें आने वाला है। सबसे पहली बात, अगर हम इंस्टाग्राम के बारे में बात करें तो फादर्स डे रिलेटेड एक बहुत ही आइकॉनिक कंटेंट जो है अपलोड हो जाएगा कुछ ही देर में, जिसमें बॉलीवुड के आइकॉनिक फादर्स के बारे में, पापालों के बारे में बात हुई है। तो आप वो पोस्ट ज़रा चेकआउट कीजिएगा जब वो आ जाएगा, और उसमें अपने फेवरेट बॉलीवुड डैड के बारे में आप जो है कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपके फेवरेट बॉलीवुड डैड कौन से हैं, कौन सा कैरेक्टर है जो आपको सबसे अच्छा लगा। मैं अपना फेवरेट बता देता हूँ। मुझे सबसे अच्छा कैरेक्टर जो लगा है, एक है दंगल में जो आमिर खान ने प्ले किया है महावीर फोगट का, उसके साथ मुझे एक और कैरेक्टर जो सबसे अच्छा लगा है, सबसे बढ़िया लगा है, वो है ठीक है थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, मगर जिस तरीके से फादर सन रिलेशनशिप का जो डायनामिक्स था उसमें, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो था रहना है तेरे दिल में, अनुपम खेर और मैडी के बीच में जो रिलेशनशिप था, जब मैडी का जो फादर का कैरेक्टर था जो अनुपम खेर ने प्ले किया था, काफ़ी बढ़िया कैरेक्टर था, काफ़ी कूल एक डैड। ये दोनों एक स्पेक्ट्रम के दो एंड में आने वाले दो डैड हैं, मगर मेरे दो फेवरेट्स हैं। आपके कौन से जरा मुझे बताइए 3311063 पर। फिलहाल यही बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: बॉलीवुड का ये सुपरहिट गाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसी गाने का एक बंगाली वर्जन भी है। इस वर्ल्ड म्यूजिक डे रेडियो ऑलिव के साथ सेलिब्रेट करो म्यूजिक जो भाषा से बंधा नहीं है।

0: short break. Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
1: अब सिर्फ savings नहीं, सपने grow होंगे. जीतिए पूरे 5 million rials cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना account balance बढ़ाइए. हर 10,000 rials growth पर पाइए एक coupon.
1: दूसरा, अगर salary 4,000 plus है या 50% save किया है, तो आप eligible है.
0: तीसरा, नए customers को पहली salary या 10,000 funding पर guaranteed coupon. और चौथा, 9 महीने regular salary पर पाइए एक extra कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: हाय गाइस, दिस इज जोरिता गांधी.
3: रेडियो ऑलिव, आई एम नंबर 1.
2: यू आर लिसनिंग टू मी ऑन रेडियो ऑलिव, जियो बिंदा.
3: रेडियो ऑलिव, आई एम नंबर 1.
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क.
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के.
6: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
7: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड. These smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे भाई थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था आइकॉनिक बॉलीवुड डैड्स के बारे में, जरा बताइए आपके फेवरेट कैरेक्टर्स के बारे में जरा बताइए। तो मुझे एक मैसेज आया है जहाँ पे इरफान भाई ने मैसेज किया है। इरफान भाई ने लिखा है कि मेरे तो भाई सबसे फेवरेट कैरेक्टर है अमरीश पुरी सर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में। क्या बढ़िया कैरेक्टर है। लास्ट में जब वो जा सिमरन जाट जी ले अपनी जिंदगी बोलते हैं, मतलब वो बहुत वो वेट फील होता है हमें उनके बातों का। जी बिल्कुल, इवन अमरीश जी ने भी काफ़ी आइकॉनिक फादर कैरेक्टर्स प्ले किए हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। मुझे एक घातक है शायद इफ आई रिमेंबर करेक्टली, घातक मूवी में भी उन्होंने जो है एक बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर जो है एज अ फादर प्ले किया था। अगर मैंने गलत बोला है तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं कि सुदेव भाई यार ये मूवी दूसरी है करके बता सकते हैं, शायद गलत हो सकता है। भाई इंसान का दिमाग है, मेमोरी इतनी स्ट्रांग थोड़ी ना, आजकल ब्रेन फॉग का जमाना चल रहा है। तो हाँ, वैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे, थोड़े मैसेजेस के बारे में बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद फिर से हम वापस आएंगे गानों के उस पार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने के लिए। फिलहाल यहीं पर यही बात करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
0: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। These smiles anytime. For more information, call 4411133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लेटेंट का जो है नया सीजन स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही बढ़िया एक रिस्पॉन्स जो है लोगों के साइड से आया है। बट यहाँ पे मैं बात करूंगा समय रैना के एक स्टैंड अप के बारे में स्टिल लाइव में, जहाँ पे वो अपने पापा के बारे में बात करते हैं, कैसे उनके पापा जो उतना एक्सप्रेस नहीं करते थे, किस तरीके से वो चीज़ों को ऐसे अपने अंदर बॉटल अप करते थे और क्यों करते थे, उसके रीजंस भी उन्होंने बताए हैं। और वहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला है कि आज जाओ अपने घर, अपने पापा को आप एक हक करो, बोलो उनसे, बात करो उनसे बैठ के। और यही बात जो है जाकिर खान ने एक और अपने एक वीडियो में बात की थी, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि यार कई दफ़ा ना हम अपने पापा लोगों से एडवाइस लेने से थोड़ा सा कतराते हैं कि यार नहीं नहीं किसी और से, हम दुनिया भर के लोगों से एडवाइस ले लेंगे मगर अपने पापा से एडवाइस लेने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार पापा ना सुना देंगे। वो 5 मिनट के लिए सुनाएंगे मगर छठे मिनट से आप उनकी बात सुनना शुरू करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि क्या बढ़िया इंसाइट्स इस इंसान के लाइफ में हमें मिल रहे हैं, इनके एक्सपीरियंसेस से हमें मिल रहे हैं। 5 मिनट के लिए डांटेंगे जरूर, वो तो हमें सहना ही पड़ेगा यार, अपने पापा नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जो भी यंगस्टर्स मुझे सुन रहे हैं, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप दिल खोल के बात करने की कोशिश कीजिए अपने पापा से। वो रेजिस्ट जरूर करेंगे भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो रेजिस्ट जरूर करेंगे मगर आपके प्यार के सामने उनके रेजिस्टेंस की दीवार धड़ धड़ धड़ करके गिर जाएगी। बस आप बने रहिए। और जो पापा लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे भी यही बोलूँगा कि थोड़ा और ओपन अप हो जाइए अपने बच्चों से, अपने फैमिली से, उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी वो साइड देखने को मिलेगा जो वो बहुत टाइम से देखना चाहते हैं। ये बात सबके लिए लागू नहीं है, कुछ लोग काफ़ी जॉली हैं मगर कुछ लोग काफ़ी गार्डर रहते हैं, ये उनके लिए है। और बहुत सारे फादर्स ऐसे हैं जो हमेशा खुद को गार्डर रखते हैं। मैं यही बोलूँगा कि मत रखिए, आप ज़रा उस दीवार को गिरा दीजिए और देखिए कितनी प्यारी दुनिया बन जाएगी आपके अपने फैमिली के साथ। ये मैं लिख के दे रहा हूँ और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, गाना प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: हेला जादू।
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
3: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
4: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड। These smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय बाय करके गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में कशिश पहुंच जाएगी आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, वक्त बिताने के लिए। मगर मैं यहाँ से जरा निकलता हूँ, टाटा बाय बाय करता हूँ। जाते जाते जाते यही याद दिलाना चाहूंगा कि अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना, और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते कल सुबह इसी सीट में, आपके साथ वक्त बिताने के लिए हम आएंगे। टिल देन कीप ऑन लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। जियो बिंदास।

0: Kids आएंगे?
1: आएंगे नहीं, आ गए।
2: Olive Short Break. Jackman की पावर पैक रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।

भाषा कोई भी हो, म्यूजिक दिलों को दिलों से जोड़ता है। दिस वर्ल्ड म्यूजिक डे रेडियो ऑलिव के साथ सेलिब्रेट करो म्यूजिक जो भाषा से बंधा नहीं है।

0: हेलो जी, वेलकम जी, कैसे हैं जी? मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है। एंड आप सबको म्यूजिक डे की, योगा डे की और फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब बीइंग अ देसी इंसान, मैं ये डिसाइड करती हूँ कि कभी भी जो है मल्टीपल चीजें एक दिन पर नहीं आनी चाहिए, मल्टीपल ओकेशंस जो है वो एक डेट पर नहीं आने चाहिए। चाहे वो ऐसा होता है ना कि यार आज कार लेनी है तो इसके बर्थडे पे ले लेते हैं, नहीं बाबा, कार लेना जो है वो अलग एक ओकेशन है, उसको सेलिब्रेट करेंगे हम अगले साल, तो इसीलिए अलग अलग रखो। लेकिन पता नहीं किसने योगा डे, फादर्स डे और म्यूजिक डे साथ में रख दिया। खैर, आज हम ये तीनों सेलिब्रेट करने वाले हैं रेडियो ऑलिव पर। आप कितने एक्साइटेड हैं? आप कौन से वाले दिन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? ये आप मुझे बता सकते हैं 3311063 पर। वैसे शुरुआत करते हैं म्यूजिक डे से। सो आज म्यूजिक डे है, आपने हमारी जिंगल सुनी ही, जैसे वो अलग अलग भाषाओं में है, बिल्कुल उसी तरह आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं म्यूजिक डे को, जहां पर एक बॉलीवुड गाना जो किसी और भाषा में जो है बनाया गया है, रिक्रिएट किया गया है, वो हम आपको सुनाने वाले हैं। तो सबसे पहले, बीइंग अ शाहरुख खान फैन, मेरा फेवरेट गाना है दिल में मेरे है दर्दे डिस्को। जब भी मुझे दुख हो रहा होता है मैं ये गाना सुन लेती हूँ, मुझे जो है बेटर लगने लग जाता है। लेकिन लेकिन लेकिन एक और ऐसा ही गाना है जो मैंने जब से सुना है तब से दुख मेरे आसपास भटक भी नहीं रहा है, और वही गाना हम आपको सुनाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून रहो 106.3 रेडियो ऑलिव पर, और ये अमेजिंग वाला गाना एंजॉय करो और वापस आ जाओ 3311063 पर। मैसेज करके जरूर बताना कि आखिर ये गाना आपको कैसा लगा। सुबह की आपकी कशिश के साथ स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: बॉलीवुड का ये सुपर हिट गाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसी गाने का एक गुजराती वर्जन भी है। इस वर्ल्ड म्यूजिक डे रेडियो ऑलिव के साथ सेलिब्रेट करो म्यूजिक जो भाषा से बंधा नहीं है।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Time check.
2: Brought to you by
1: Nanat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor. स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 10:09.
3: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन.
4: हाय, दिस इज विपाशा बासु.
5: हाय, मैं अक्षमा राव.
6: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा.
7: हाय, दिस इज दिशा पार्डी.
3: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM.

0: कल जो है मेरा जो फ्रिज है उसमें बर्फ ज्यादा जम रही थी, तो हमने ये सोचा कि इसकी जो कूलनेस है वो कम कर देते हैं, लेकिन उसकी कूलनेस कम नहीं हो रही है. सो मैंने जो है ऐसे खुले में एकदम फुल ऑन एटीट्यूड के साथ एंड स्वैग के साथ ये जोक मार दिया कि ये जो है कम कूल नहीं हो सकता रेफ्रिजरेटर, क्योंकि ये मेरा फ्रिज है. सो इट हैज टू बी कूलर, यू नो. सब मुझ पे हंसे हैं यार, क्योंकि किसी को या तो जोक समझ नहीं आया, और जिसको जोक समझ आया उसको ये समझ आ गया कि मेरा ह्यूमर कितना नीचे है. लेकिन आप लोग तो मुझसे राबता रखते हो ना, इट वॉज फनी. वेलकम बैक टू 106.3 रेडियो अलवर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहां पर अब वक्त हो गया है आपसे जरा मौसम के हालचाल डिस्कस करने का. सो इस वक्त टेम्परेचर जो है वो हो रहा है 39 डिग्री सेल्सियस एंड आज का हाईएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है 44 डिग्री सेल्सियस एंड आज का लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा. यानी कंपेरेटिवली पिछले एक हफ्ते में जो है टेम्परेचर धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है एंड आई होप ऐसे ही कम होता रहे तो जो है हमें थोड़ी सी गर्मी कम महसूस हो. बाकी अगर आपको थोड़ी बहुत भी गर्मी महसूस हो रही है तो देखिए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जो है इंतजार कर रहा है आपके रेडियो सेट्स पर आपका. सो ये गाना एंजॉय कीजिए. बाकी थोड़ी सी देर में आकर हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग वाली मूवी ट्रेलर की, ट्रेलर नहीं एक्चुअली टीजर की, मतलब पूरा का पूरा जो टीजर है वो ट्रेलर जैसा लग रहा है बट ठीक है टीजर है. सो टीजर की बात करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड रहो और कहते रहो जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग.

हम जब बॉलीवुड की कुछ अच्छी एक्ट्रेसेस की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले दीपिका पादुकोण का नाम ले लेते हैं, फिर प्रियंका चोपड़ा का नाम ले लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम श्रद्धा कपूर को भूल जाते हैं, एंड यही तो नहीं करना है। वेलकम जी 106.3 रेडियो आलो पर, मैं हूँ आपकी कसुसन, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ। लाइफ मस्त है, एंड जब सारे के सारे लोग कॉकटेल 2 मूवी देखने गए तो उन्हें कुछ और अमेजिंग सरप्राइज मिला, और वो था श्रद्धा कपूर की एक मूवी एठा का टीजर, जिसमें श्रद्धा कपूर क्या लग रही हैं, क्या अमेजिंग एक्टिंग कर रही हैं, और फिर से एक एग्जांपल सेट कर दिया श्रद्धा कपूर ने कि वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस है। सो ये जो है एक महाराष्ट्रियन आइकन जो है उसके उनके ऊपर एक फिल्म बनी हुई है, जो एक बहुत ही अच्छी लावनी डांसर थी, एंड उन्होंने इस आर्ट फॉर्म को वर्ल्ड लेवल पर बहुत ऊपर जो है वो पहुंचाया था। सो इस बारे में ये मूवी होने वाली है, एंड टीजर का जो है इंतजार सबको था, अब ट्रेलर का इंतजार है, एंड मुझे तो मूवी का भी बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार है। आपने टीजर देखा या नहीं देखा बताइए मुझे 3311063 पर मैसेज करके। बाकी अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, इन्हें एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Story of the day. Story of the day. आजकल सब कुछ कनेक्टेड है, फोन वाईफाई से, वॉच फोन से और ऑफिस लैपटॉप से। बस एक कनेक्शन है जो रोज वीक हो जाता है, खुद से कनेक्शन। योगा शब्द संस्कृत के युज से आया है, जिसका मतलब है टू यूनाइट बॉडी को माइंड से और माइंड को सोल से। तो इंटरनेशनल योगा डे पर परफेक्ट पोज बनाना जरूरी नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए पॉज बटन दबाना जरूरी है, क्योंकि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन है खुद से खुद का कनेक्शन।
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM, Geobind.

काम मैं भले ही नहीं कर पाऊंगी, मुझसे काम नहीं हो पाएगा, लेकिन काम का स्ट्रेस मुझे बात बात पे हो जाता है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, जो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड हर रोज हम आकर इस सेगमेंट में बात करते हैं कि आज स्ट्रेस किस तरीके से कम किया जाए। कल मैंने आपको बताया था कि आप एक चौक लेकर जो है बच्चों की तरह अपने घर के बाहर जो है थोड़ी बहुत ड्राइंग कर सकते हैं, जहां आपको डांट ना पड़े ताकि वो तो टेम्पररी होती है चौक, वो तो एक बार पानी डालने से धुल जाएगी, लेकिन आपका स्ट्रेस जो है वो भी एकदम धुल सकता है। सो ये वाला तरीका अगर आपने ट्राई किया है तो 3311063 पर आके मुझे बताइएगी कैसा रहा। बाकी एक और स्ट्रेस जो है रिलीज करने का तरीका मैं ले आई हूँ आज आपके लिए। सो आप कोल्ड वाटर जो है आइस वाला जो पानी होता है उसमें अपना फेस डंक कर सकते हो, यानी फेस डाल सकते हो एक आध सेकेंड के लिए। सो उससे क्या होगा कि आपका जो स्ट्रेस है वो एकदम कूल हो जाएगा, इससे स्किन भी बहुत अच्छी होती है। तो एक बार ये भी ट्राई कीजिएगा 3311063 पर, अगर आपको कोई स्ट्रेस कम करने का तरीका पता है तो वो बता लो। देखो यार, वैसे म्यूजिक जो है वो भी एक थेरेपी ही है, तो म्यूजिक के नाम पे जो है अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, इन्हें एंजॉय कीजिए। बाकी मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर। कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

भाषा कोई भी हो, म्यूजिक दिलों को दिलों से जोड़ता है। दिस वर्ल्ड म्यूजिक डे रेडियो ऑलिव के साथ सेलिब्रेट करो म्यूजिक जो भाषा से बंधा नहीं है।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 11:09 यानी 11:09।
2: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी। नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट। बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व विद प्राइड। दानादल पहाड़, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर। सुक वाकिफ अलखोर।
3: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
4: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप लोग मुझे आज कंफर्म करके बताएंगे कि क्या ये सिर्फ मेरे पापा करते हैं या ये आप लोगों के साथ भी होता है कि पापा अगर घर पर हैं और अगर वो छुट्टी पर हैं और अगर सबकी छुट्टी है तो वो किसी को भी बैठने नहीं देंगे एक जगह पे, सबको बोलते रहेंगे अरे उठो ये काम करो, कितने आलसी हो गए, उठो ये वाला काम करो। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ऑफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई। एंड लाइफ मस्त तो देखो पापा चलने नहीं देते हैं अगर छुट्टी वाले दिन पे वो घर पर हैं और आप रिलैक्स करने का सोच रहे हो, वो सुबह सुबह आपको उठा देंगे कि यार पूरे टाइम सोते रहते हो, एक ही दिन तो मिलता है, उठो एक्टिव रहो, ये कोई एज है तुम्हारी आराम करने की? हम देखो अभी भी एक्टिव है, सारे पापा करते हैं मेरे हिसाब से। एंड पापा को जो है छुट्टी वाले दिन सारे तरीके की चीजें याद आ जाती है कि आज पंखे का जो है बेयरिंग बदल

0: छुट्टी वाला दिन याद आता है जब आपने सोचा है कि रिलैक्स करना है और पापा आपसे सारे काम कराएंगे, आपको बैठने नहीं देंगे और ना ही खुद बैठेंगे। मेरे पापा जो है वो घर से ज्यादा ना मतलब प्लम्बर की दुकान पर, इलेक्ट्रिशियन के पास या कार मैकेनिक के पास जो है ज्यादा मिलते हैं छुट्टी वाले दिन। आप भी बताइए कि आप इस बात से रिलेट कर सकते हैं 3311063 पर। और आज फादर्स डे है सो क्यों ना इस बारे में बात की जाए कि पापा लोगों की आदतें जो है क्या होती हैं, मतलब जो सभी के पापा लोगों की एक जैसी आदतें होती हैं, पेटेंट पापा बिहेवियर पे आज हम बात करने वाले हैं। सो आप बताइए कि ऐसे कौन कौन सी आदतें हैं जो पापा लोग अक्सर करते हैं एंड हमें लगता है कि यार पापा क्यों कर रहे हो ये। 3311063 इस पर जल्दी से मैसेज कर दीजिए। बाकी अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, उन्हें भी इंजॉय कीजिए। और बाकी आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास। 3311063 इज द नंबर।
1: Cool song. Radio Olive पर आने वाला गाना Cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
1: Cool song.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

अरे पापा के बिना लाइफ कितनी टफ हो सकती है ये मुझे अब समझ आ रहा है, क्योंकि कुछ चीजें जो अपने आप हो जाती थी मेरी लाइफ में अब वो मुझे खुद करनी पड़ रही है, मुझे खुद उनका स्ट्रेस लेना पड़ रहा है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड जब तक मैं अपने घर पे थी ना, भोपाल में थी, इंडिया में थी, तब तक मुझे ना ये ध्यान ही नहीं देना पड़ता था कि गाड़ी में पेट्रोल भराना पड़ता है, ऑटोमेटिकली पेट्रोल आ जाता था। लेकिन अब यहाँ पर जब मैं पेट्रोल भराती हूँ तो मुझे लगता है कि ओ पेट्रोल ये भी भराना होता है। अपने आप अगर कोई नल लीक कर रहा है तो वो ठीक हो जाया करता था। मैजिकली अगर बस मैं ऐसे यूनिवर्स में कंप्लेन कर दूं कि इससे पानी टपक रहा है और अगले दिन वो पानी नहीं टपक रहा होता था। लेकिन अब उसके लिए जो है मुझे पूरी की पूरी एप्लीकेशन देनी पड़ती है। सो देखो ये कैसे हो रहा है, ये अपने आप पापा कर दिया करते थे लेकिन अब नहीं हो पाता। एक बार पापा से कह दो कि यार पापा आज जो है आज ये चीज खाने का मन कर रहा है, उस सीजन चीज का सीजन भी नहीं है लेकिन वो चीज आ जाया करती थी। सो ये कुछ टिपिकल पापा बिहेवियर है जो पापा लोग अक्सर कर देते हैं एंड हमें बाद में रियलाइज होता है। सो आप मुझे बताइए कि टिपिकल पापा बिहेवियर आपके हिसाब से क्या है जो सभी के पापा करते हैं। ये यूनिवर्सली है कि अगर पापा है कोई इंसान तो वो ये बिहेवियर करेगा। ऐसी कौन कौन सी चीजें, ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स हैं पापा लोगों की, इस पर हम बात कर रहे हैं। 3311063 पर आकर जल्दी से मैसेज कर दीजिए। अमेजिंग वाले गाने आपके लिए, आपके पापा के लिए मैंने जो है प्लेस किए हुए हैं। सो स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास। एंड हाँ, पापा को हैप्पी फादर्स डे विश करना मत भूलना, ठीक है।

0: Olive Bay. Story of the day. Story of the day.
1: आजकल सब कुछ कनेक्टेड है, फोन वाईफाई से, वॉच फोन से और ऑफिस लैपटॉप से। बस एक कनेक्शन है जो रोज वीक हो जाता है, खुद से कनेक्शन। योगा शब्द संस्कृत के युज से आया है, जिसका मतलब है टू यूनाइट बॉडी को माइंड से और माइंड को सोल से। तो इंटरनेशनल योगा डे पर परफेक्ट पोज बनाना जरूरी नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए पॉज बटन दबाना जरूरी है, क्योंकि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन है खुद से खुद का कनेक्शन।
0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

देखिए संजय जी का मैसेज आया है मेरे पास और वो ये कह रहे हैं कि पापा बिहेवियर जो है, टिपिकल पापा बिहेवियर ये होता है कि आपको पापा जो है वो पिछले 2 घंटे से इस बात पे लेक्चर दे रहे हैं कि फोन क्यों नहीं चलाना चाहिए, क्यों फोन की वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है. एंड आयरनी इज ये सब वो फोन पर जो है स्क्रोल करते करते, व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करते करते जो है आपको डांट रहे होते हैं. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए जो है लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ. एंड आज फादर्स डे पर हम जो है टिपिकल पापा बिहेवियर पे बात कर रहे हैं. तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए लेकिन सबके जो है रिप्लाई सेम ही थे. बिकॉज ऑफ कोर्स टिपिकल पापा बिहेवियर क्या होता है कि वो जो है आपको एक जगह बैठने नहीं देते हैं, पूरे टाइम बोल रहे होते हैं कि कुछ काम कर लो कुछ काम कर लो, या फिर आप उनसे एक बार कोई चीज की जो है डिमांड रख दो और फिर वो पूरा फ्रिज उस खाने की चीज से भर देते हैं, या पहले वो आपको मना करते हैं भले ही वही चीज उन्होंने आपको दिलाने का प्लान कर लिया. सो ये जो है टिपिकल पापा बिहेवियर है, इस पर हम बात कर रहे हैं. लेकिन मैं जो है आप लोगों से बस आपका एक मिनट चाहती हूँ. एंड ये चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग अपने पापा को जो है जाकर आज हैप्पी फादर्स डे विश करें. बिकॉज अक्सर हम मम्मी से तो इमोशनल बातें कर लेते हैं, ऐसे गहराई में जाके गहरी गहरी बातें कर लेते हैं लेकिन पापा से नहीं कर पाते. सो बस आज जाओ पापा को जो है जल्दी से विश कर दो, फूल वूल दे दो उनको, तो उनको थोड़ा अच्छा लग जाएगा. आई नो वो आपको थैंक यू या जो है लव यू नहीं बोलेंगे लेकिन यही तो बात है, पापा लोग बोलते ही तो नहीं है. सो आप बोल दीजिए हैप्पी फादर्स डे उन्हें एंड अमेजिंग वाले गाने जो है वो एंजॉय करते हुए मेरे साथ कहिए जियो बिंदास.

0: Manila's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Gio Bindas.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: मधुर नैनी नार अलबे.

भाषा कोई भी हो, म्यूजिक दिलों को दिलों से जोड़ता है। दिस वर्ल्ड म्यूजिक डे रेडियो ऑलिव के साथ सेलिब्रेट करो म्यूजिक जो भाषा से बंधा नहीं है।

0: देखिए जी, आपके पापा का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पापा को मूवीज देखना पसंद है, लेकिन थिएटर में जाके मूवीज देखना पसंद नहीं है, क्योंकि उनका मानना ये है कि मैं 3 घंटे के लिए एक थिएटर में बंद जाऊंगा और इतनी देर जो है एक जगह बैठ ही नहीं सकता। वेलकम जी 106.3 रेडियो पर, मैं हूँ आपकी कसूस एंड शो आपके लिए जो है मैं लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है। एंड आज फादर्स डे है, एंड अगर आप आज चाहते हैं अपने पापा को स्पेशल फील कराना एंड उनके साथ मूवीज देखना, तो कुछ मूवीज मैं लेकर आ गई हूँ जो मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ आपको, जो आप अपने पापा के साथ बैठकर, अपनी फैमिली के साथ बैठकर इंजॉय कर सकते हैं एंड आज फादर्स डे इंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहली मूवी देखो, मैं पीकू ऑब्वियसली बोलना चाहूंगी बिकॉज फादर डॉटर स्टोरी है, और पीकू के बाद एक और फादर डॉटर स्टोरी है अंग्रेजी मीडियम, ये भी बहुत अच्छी मूवी है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप एक फैमिली जो है फन मूवी कॉमेडी देखना चाहते हैं तो 2 दुनी 4 आप देख सकते हैं, इसमें ऋषि कपूर ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करी है। उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा यू नो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है सो आप अपने डैड के साथ दंगल देख सकते हैं या फिर जर्सी मूवी देख सकते हैं। एंड अगर आपको थोड़ा सा यू नो एक्शन पसंद है सो एनिमल भी एक अच्छा पिक हो सकती है, लेकिन नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए अगर आपके पापा जो है सुपर कूल नहीं है तो। वजीर भी एक मूवी है, वो भी आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको अपने पापा के कॉलेज डेज उन्हें याद दिलाने हैं सो छिछोरे मूवी जो है वो एक बहुत अच्छी मूवी है, या 102 नॉट आउट जो है एक बहुत ही बेहतरीन पिक होने वाली है। सो ये वो कुछ मूवीज हैं जो अपने पापा के साथ बैठकर आप फादर्स डे पर देख सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं। बाकी जनरली भी ये बहुत अमेजिंग मूवीज हैं, इन्हें आप ऐसे भी देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड रहिए 106.3 रेडियो ऑलिव पर। एंड आपको भी अगर ऐसी कोई मूवी पता है जो आप चाहते हैं कि मैं सबको रिकमेंड करूं तो 3311063 पर आकर आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल फादर्स डे एंजॉय कीजिए, आकर बात करेंगे जरा योगा डे पर भी। सो स्टे ट्यून्ड रहिए एंड आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: बॉलीवुड का ये सुपरहिट गाना तो आपने सुना ही होगा। When the party. लेकिन इसी गाने का एक पहाड़ी वर्जन भी है।
2: तेरा धुन की नानी चू, तेरा पिछने बोलू चू, तेरी छे लाल जन बुरास को फू।
1: इस वर्ल्ड म्यूजिक डे रेडियो ऑलिव के साथ सेलिब्रेट करो म्यूजिक जो भाषा से बंधा नहीं है।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। No matter where the game is, identity हमेशा साथ रहती है। और यही है द हिवारी इनिशिएटिव, जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रेवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स, एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
1: Hi, I'm Soha Ali Khan. And you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
2: I'm in number one, Radio Olive.
3: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: डेट क्या है यार आज? डेट क्या है? डेट क्या है आज? बताओ बताओ डेट क्या है आज? देखिए आज की डेट तो कोई भी भूले नहीं भूल सकता, स्पेशली मैं।
1: वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसूस एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ। एंड आज 21st

0: दिन खत्म क्यों नहीं हो रहा यार, कितना लंबा चल रहा है। तो आज वही दिन होने वाला है जो बहुत ही ज्यादा लंबा रहेगा। ये साल का सबसे लंबा दिन है एंड आज के दिन ही योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड योगा के बारे में अगर मैं बात करूँ तो शुरुआत में योगा जो है वो सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए जो है वो किया जाता था, लेकिन अब जो है योगा ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ के लिए किया जाता है। एंड पहले जब मैं स्कूल में योगा किया करती थी तो मैं यही बोलती थी कि योगा से होगा हाथ में दर्द, पैर में दर्द, सिर में दर्द। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ अब थोड़ी सी बड़ी होने के बाद, कि योगा से होगा हाथ में दर्द, पैर में दर्द, सर में दर्द, लेकिन पहले के ना शुरू के एक दो दिन होगा, उसके बाद आपको अलग सा जो है ना कामनेस फील होने लग जाएगा, आपकी बॉडी जो है वो बेटर बिहेव करने लग जाएगी। सो योगा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आप किस तरीके से एक्सरसाइज करते हो एंड किस तरीके से योगा को अपनी लाइफस्टाइल में इनकलकेट करते हो या नहीं करते हो, ये मुझे बताओ 3311063 पर आकर। बाकी देखो यार, अगर आप दिन में बस 10 मिनट योगा करोगे सो आपकी बॉडी जो है ऑटोमेटिकली एक अच्छी साइकिल में आ जाएगी, बिहेव करने लग जाएगी अच्छी तरीके से। सो इस पर और बात करेंगे थोड़ी सी देर में। सो स्टे ट्यून रहिए एंड आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Jackman की पावर पैक रेंज हैवी ट्रक्स टिपर

वैसे तो किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में मैं आपसे बात करने वाली थी, लेकिन मेरे भाई का मेरे पास मैसेज आ गया है तो मैंने सोचा कि मैं इस पे बात कर लेती हूँ. सो मैंने यहाँ पे कदर में बैठे बैठे इंडिया में अपने पापा को, अपने ग्रैंड फादर को जो है कार्ड और गिफ्ट जो है वो फादर्स डे का भिजवा दिया. अब मेरे जो भाई हैं वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि तू ऐसी चीजें कर देती है और उसके बाद हम पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि हमने क्यों नहीं किया. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई. एंड आज म्यूजिक डे है एंड मेरे जो है ग्रैंड पेरेंट्स को एंड मेरे फादर को म्यूजिक का काफ़ी शौक है, तभी ऑब्वियसली मैं रेडियो फील्ड में आई हूँ. सो मैंने उन्हें उसी से रिलेटेड कुछ कुछ भेजा, तो म्यूजिक डे एंड फादर्स डे दोनों साथ में सेलिब्रेट हो गया. अब मेरा भाई जो है वो मुझसे ये कंप्लेन कर रहा है कि तुम इतनी दूर से बैठे बैठे एक बार गिफ्ट भेज देती हो एंड ये जो है खुश हो जाते हैं एंड मुझे तुमसे कंपेयर करने लग जाते, वहीं पर मैं यहाँ पर रहकर इनके लिए डेली सब कुछ करता हूँ, इन्हें जब जो चाहिए होता है तब वो ला कर देता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी वैल्यू नहीं है. देखो मेरे भाई, अक्सर यही होता है, जो इंसान दूर होता है ना और अगर वो थोड़े भी एफर्ट कर देता है तो वो एफर्ट जो है बहुत सारा लगता है, लेकिन कोई अगर आपके पास में है एंड वो आपके लिए डेली थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर रहा है तो वो आप जो है कभी मेंशन भी नहीं करते. कोई बात नहीं, धीरे धीरे उन्हें समझ आ जाएगा. जैसे मैं जब शुरू में कतर में मूव हुई थी ना, तो मेरी फैमिली को समझ आया था कि यार ये तो बहुत सारे काम किया करती थी, इसके जाने से तो हमें थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है. तो धीरे धीरे जो है पता चल जाएगा, कोई बात नहीं. एंड देखो, क्यूट लोग हमेशा क्यूट होते हैं, सो मेरी बराबरी तो आप नहीं कर सकते. कोई बात नहीं, आप भी जो है पापा के लिए जो है फ्लावर्स ले जाइए एंड उन्हें हैप्पी फादर्स डे विश कर दीजिए. बाकी मैं आपको इतना ही कह सकती हूँ कि यू नो, बड़ा बच्चा होने का यही फायदा होता है. ऑलरेडी जो बच्चा जो है बाहर रह रहा है उसको कहीं ना कहीं एक प्रिविलेज मिलता है कि बेचारा अकेले बाहर रह रहा है. सो वो प्रिविलेज मुझे मिला हुआ है. आप बताइए आपने फादर्स डे कैसे सेलिब्रेट किया. 3311063 पर जो है मैसेज करिए. बाकी अमेजिंग वाला गाना इंजॉय कीजिए, आकर जरा आपको टाटा बाय बाय करूंगी एंड जाते जाते कुछ स्पेशल आपको जरूर से बताऊंगी. सो स्टे ट्यून रहिए एंड कहते रहिए जियो बिंदा.

Story of the day. Story of the day. आजकल सब कुछ कनेक्टेड है, फोन वाईफाई से, वॉच फोन से और ऑफिस लैपटॉप से। बस एक कनेक्शन है जो रोज वीक हो जाता है, खुद से कनेक्शन। योगा शब्द संस्कृत के युज से आया है, जिसका मतलब है टू यूनाइट बॉडी को माइंड से और माइंड को सोल से। तो इंटरनेशनल योगा डे पर परफेक्ट पोज बनाना जरूरी नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए पॉज बटन दबाना जरूरी है, क्योंकि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन है खुद से खुद का कनेक्शन।

0: मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

चलिए जी, अमेजिंग गाने सुनते सुनते वक्त हो गया है यहाँ से जाने का, लेकिन कोई बात नहीं, आज बहुत सारे ओकेशन हम साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये लंबा सा दिन जो है ये भी बीत जाएगा। मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ओलिवर शो, आप मेरे साथ लाइफ मस्त एंजॉय कर रहे थे। अब मैं जा रही हूँ, आऊंगी कल, लेकिन मैं जाते जाते वही कहना चाहूंगी जो हर रोज कहती हूँ कि अपना जो है ख्याल रखिए, खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए, सनस्क्रीन लगाते रहिए, हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखिएगा। एंड आज जो है फादर्स डे है, सो अपने डैड को जरूर से विश कर दीजिएगा, मेरे तरफ से भी विश कर दीजिएगा, क्योंकि सारे पापा देखो यूनिवर्स के सेम ही होते हैं। बाकी म्यूजिक डे पर अनलिमिटेड जो है फन एंजॉय करते रहिए रेडियो ऑलिव के साथ, एंड योगा डे पे अपनी फिटनेस का भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, ख्याल रखना एंड मेरे साथ कहते रहना जियो।

भाषा कोई भी हो, म्यूजिक दिलों को दिलों से जोड़ता है। दिस वर्ल्ड म्यूजिक डे रेडियो ऑलिव के साथ सेलिब्रेट करो म्यूजिक जो भाषा से बंधा नहीं है। ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: Jackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
3: सत श्री अकाल जी, मैं हाँ हरभजन मान। तुम सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास।
4: Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
5: Olive Music Marathon. 1 ghanta, non-stop back to back.

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता. इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया. अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया. नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है. और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. कल्चर ट्रेवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. Olive Music Marathon. 1 ghanta, 1 ghanta. Non-stop back to back.

0: बॉलीवुड का ये सुपरहिट गाना तो आपने सुना ही होगा,
1: मैं तेरा हर जबरा हर जबरा फैन हो गया।
0: लेकिन इसी गाने का एक भोजपुरी वर्जन भी है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
2: अरे यार, हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिवीजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द जीसीसी। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
0: ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑल एयर
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
3: मॉर्निंग्स एंड नाइट

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: भाषा कोई भी हो, म्यूजिक दिलों को दिलों से जोड़ता है। दिस वर्ल्ड म्यूजिक डे रेडियो ऑलिव के साथ सेलिब्रेट करो म्यूजिक जो भाषा से बंधा नहीं है।
1: मॉर्निंग से नाइट।

Romiki Vaz mein Varu from the movie Mirzapur, not movie, the series. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Dinesh aage ji aapke saath Olive Recharge lekar a very good afternoon, meri jaan. Itni sari cheeze hain aaj wish karne ke liye. Today is International Yoga Day. Then today is Father's Day and today is World Music Day. ये सारी चीजें different aspect of our life में important हैं. Yoga हमारी health का बहुत ख्याल रखता है. Fathers हमारी पूरी life का, you know, fathers do not get much credit. पर हमारी हर चीज में हमारे साथ डट के खड़े होते हैं, हमें प्रोटेक्शन देने के लिए और हमें हौसला देने के लिए. वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, यू हैव योर फादर बिसाइड यू एंड दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग यू. एंड दैट आई हैव रियलाइज्ड, यू नो, ऐसे थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ माई लाइफ सो फार. एंड साइलेंट रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, कोई ओपिनियन नहीं देंगे, कोई फीडबैक भी नहीं देंगे. मुश्किल से, लाइक इफ आई आस्क हिम समथिंग कि पापा आज आपने मेरा शो सुना, कैसा लगा आपको? इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग द रेडियो, आई वुड फोर्स हिम टू लिसन टू माई शो एंड आई वुड आस्क, लाइक हाँ अच्छा था, पर चुपचाप से, यू नो, ही वुड शेयर द लिंक ऑफ वट एवर स्टेशन आई एम वर्किंग एट, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे. मैंने अगर कोई वीडियो पोस्ट किया है अपने पेज पे, वो अपने फीड पे शेयर कर देंगे. सो वो एक साइलेंट एडमिरेशन और जो फीडबैक उनका मिलता है, बहुत सटल, बहुत स्वीट और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. सो या थैंक यू टू ऑल द फादर्स आउट देयर, यू नो, हु हैव बीन अ रॉक फॉर देयर किड्स एंड मेड श्योर कि जो उनके बच्चे लाइफ में करना चाहते हैं ना, वो करके रहे. हाँ जी. एंड देन देयर इज म्यूजिक. भाई, इसके बिना तो लाइफ अधूरी. आई कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट म्यूजिक. बताओ, इससे सुंदर तरीके से आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है.

0: And that's the beauty of music, you know, no matter what language is, if the rhythm, the beats, the voice, it connects with you, aap understand kar jate ho, aap vibe kar jate ho.
1: Zara, zara, behakta hai, aaj to mera tan.
0: Koi bhi mood ho, koi bhi emotion ho, music ke through aap easily use express kar paate ho. I feel like music is the best gift to mankind, and you know, jo bhi ise lekar aaye is duniya mein deserves a salute and deserves so much applause ke hamare haath thak jayenge yaar taali bajate hue. To koi baat nahi, abhi main aapko sunane wali hu ek aisa gana, aaj pure din, you know, world music day ke upalaksh mein aap sunne wale hain radio olive par aise gaane jo ki हिंदी सॉन्ग से अडेप्ट करके दूसरी लैंग्वेजेस में लिए गए हैं, बट जो वाइब है वो स्टिल इंटैक्ट है और आप समझ जाएंगे कौन से गाने हैं, उसी तरह से वाइब करेंगे. सो या कमिंग अप इज झूमे जो पठान, स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.
2: बॉलीवुड का ये सुपरहिट गाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसी गाने का एक अरेबिक वर्जन भी है. इस वर्ल्ड म्यूजिक डे रेडियो ऑलिव के साथ सेलिब्रेट करो म्यूजिक जो भाषा से बंधा नहीं है.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडो ऐप पर. Experience more with ओरेडो.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: मैं हूं अनिल कपूर, रेडियो ओलिव

0: Tanisha.
1: Arijit Singh ke awaaz mein zamana lage from the movie Metro in the only on Radio 106.3 FM. Tanisha aapke saath all every job chal raha hai yahan par. Aur dekho, music day to hum celebrate kar rahe hain, hum har din hi celebrate karte hain, iske bina life adhoori hai, hai na. I wish ki hamari life mein ek background music 24 hours chalta rehta, jo you know whatever situation is going on usko compliment kar raha ho, but wo sirf movies mein hota hai. Isiliye aapke paas radio hai meri jaan. Somehow it happens ki, you know, whatever situation you're in or whatever emotion you're feeling, gaana aa jata hai uske according. It's the magic of radio. Then World Father's Day bhi hai. And they are the backbone of our lives, you know. Jis tarah se wo apne passion aur apni hobbies ko sacrifice kar dete hain for their families, उसके लिए बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलता, यू नो. ऐसा देखा जाता है कि ये तो बाय डिफॉल्ट चीज है ना, ये तो उन्हें करना ही है. नहीं, दे आर डूइंग इट एंड इट शुड बी अप्रिशिएटेड. एंड देर आर अ लॉट ऑफ हैबिट्स. आप सबके फादर्स की भी कुछ ना कुछ ऐसी हैबिट्स होंगी जो समवट अनोइंग है बट क्यूट भी है. एंड ऑब्वियसली वो पापा है, उनकी आदतें हमें भी तो आएंगी. मुझ में जो आदत है मेरे पापा की वो ये है कि मैं जब ऑफिस से घर जा रही हूँ तो मुझे ना चुप रहना है, मुझे नहीं बात करनी, क्योंकि मैंने पूरा दिन इतना सोशलाइज कर लिया है कि मुझे थोड़ा सा ऐसे शांत रह के बैठना है. एंड दैट्स व्हाट माय फादर डज. ही वुड कम फ्रॉम द ऑफिस एंड माय मॉम वुड बी टेलिंग एवरीथिंग, यू नो, आज ऐसे हुआ, आज इसने ये किया, आज ये हो गया, आज कोको माय नेफ्यूज ने ये करा. एंड माय फादर वुड जस्ट कीप लिसनिंग एंड वुड नॉट से एनीथिंग, कुछ नहीं बोलेंगे. एंड देन वन थिंग ही विल से, प्लीज लेट मी सिट क्वाइट. एंड दिस आई हैव टेकन फ्रॉम हिम. अनदर थिंग इज कि मम्मा को अनॉय करने के लिए वो फोन पे ना बहुत तेज वीडियो लगा के बैठ जाते हैं. एंड ही नोज कि माई मदर विल बी बॉदर्ड बाई दिस और वो जरूर कुछ ना कुछ बोलेगी. एंड आई डू द सेम. यस, दीज आर द फ्यू क्वर्क्स विच आई हैव गॉट फ्रॉम माई फादर. आपको कौन सी आदतें लगी हैं अपने पापा से, ये जानना चाहूंगी मैं. 3311063 पर मैसेज कीजिए और बताइए मुझे. और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
2: Cool song. Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour.
3: Kya baat hai sir? Kya par ye baat hai?
4: Cool song.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है, और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स, एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।
0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
3: This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा।
5: In association with
6: Doha Bank,
5: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC applies.

बॉबी जयश्री की आवाज में बहुत ही सुंदर गाना रहना है तेरे दिल में मूवी से जरा जरा ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM तरीशा के साथ सुना आपने ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर एंड हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने लॉन्च कर दिया है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रोलर सर्विस फॉर चिल्ड्रन सो पेरेंट्स हु आर ट्रैवलिंग उनके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी यू नो यंग चिल्ड्रन को जब वो लेकर जा रहे हैं उन्हें बहुत ख्याल रखना पड़ता है इफ इट्स अ क्रॉलिंग बेबी तो उन्हें हमेशा उन्हें अपनी यू नो गोद में रखना पड़ता है उन्हें उठाकर चलना पड़ता है सो दैट इज व्हाई हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्री स्ट्रोलर सर्विस जो है वो इंट्रोड्यूस किया है टू मेक ट्रैवलिंग easier for families with young children. Parents traveling with babies and toddlers can use this service inside the airport and aapki comfort and convenience ke liye ye lekar aaya gaya hai. Jo airport hai, it continues to expand family friendly facilities jaise ki baby changing rooms hain, parents rooms hain, family restrooms hain, children's play areas are there. Quiet rooms for families are also there. So, ये सारी services जो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बहुत अमेजिंग बनाती है आपकी कन्वीनियंस के लिए लाई गई है सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद योर टॉडलर और अ यंग बेबी आप इस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रोलर सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट अप अभी कुछ दिनों से मोहित चौहान की आवाज में सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव ट्रियो बिंदास

Story of the day. Story of the आजकल सब कुछ कनेक्टेड है, फोन वाईफाई से, वॉच फोन से और ऑफिस लैपटॉप से। बस एक कनेक्शन है जो रोज वीक हो जाता है, खुद से कनेक्शन। योगा शब्द संस्कृत के युज से आया है, जिसका मतलब है टू यूनाइट बॉडी को माइंड से और माइंड को सोल से। तो इंटरनेशनल योगा डे पर परफेक्ट पोज बनाना जरूरी नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए पॉज बटन दबाना जरूरी है, क्योंकि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन है खुद से खुद का।

0: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
1: Dr. On-Air, brought to you by Naseem Healthcare.
2: I'm Dr. Faseel Abdurrahman, periodontist, working in Naseem Dental Center, Muntaza. Children's are the primary responsibilities, the caretakers, that is the parents or the grandparents. First dental visit always should be 6 months or when the first baby tooth erupts. That is the first thing that has to be taken care by the parent.
1: Dr. On-Air, Dr. On-Air. Brought to you by Naseem Healthcare.
3: Aur le laga aur ho ja recharge.
4: Olive Recharge.
5: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
4: Olive Recharge.
1: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
7: In association with
8: Doha Bank,
7: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

अरिजीत सिंह की आवाज में ब्यूटीफुल ट्रैक रेत जरा सी ऑन रेडियो 106.3 FM। तनिषा आपके साथ ऑल ओवर टॉक चल रहा है यहाँ पर, एंड नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी हैज कम अप विद दिस new initiative which is Cyber Shield, and it will basically improve the cyber awareness among leaders and managers so that cyber risk management proper ho sake, governance aur security strategy ko bhi ye cover karega, crisis preparedness rahe aur protection of digital systems and use of AI in cyber security, in sab cheezon ke bare mein ye aware karega. And also basic aim ye hai ki jo cyber attacks hain jo national operations ya fir essential services ko impact kar sakte hain unke liye hum पूरी तरह से प्रिपेयर रहें, एंड दैट इज सच अ ग्रेट इनिशिएटिव इन दिस यू नो एरा ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटाइजेशन. ये सब चीजों के बारे में अवेयर रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, सो दैट्स रियली अमेजिंग. अलोंग विद दैट, अब हमने डिजिटाइजेशन की बात करी है तो इंस्टाग्राम तो यूज कर ही रहे हैं हम, बी वेरी केयरफुल विद दैट ऑल्सो. बट रेडियो ऑलिव के पेज पर जाइए, वहां पर चल रहा है कॉन्टेस्ट, आप जीत सकते हैं आईफोन सिटी एक्सचेंज की तरफ से. चेकआउट कीजिए पोस्टर और उस पर कर दीजिए कॉमेंट, एंड गुड लक रख लो. स्टे ट्यून्ड एंड जियो विद अस.

भाषा कोई भी हो, म्यूजिक दिलों को दिलों से जोड़ता है। दिस वर्ल्ड म्यूजिक डे रेडियो ऑलिव के साथ सेलिब्रेट करो म्यूजिक जो भाषा से बंधा नहीं है। मॉर्निंग से

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Hello to all the listeners of

And see, this beautiful track is coming up. आज़म अज़हर की आवाज़ में ये वाला भी सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM जियो बिंदास मेरी जान.

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Dinesh aapke saath Olive Radio chal raha hai yahan pe. Cocktail 2 se wala suna aapne. वैकी विजडम में बात करते हैं लिक्विड पेपर की और यू कैन से वाइटनर. यस, सो 1950s में यू नो जब टाइपराइटर्स होते थे तो अगर आप टाइप कर रहे हैं कुछ चीज को तो उसमें अगर आपसे गलती हो जाए तो आप उसको यू नो डिलीट करके बैकस्पेस करके हटा नहीं सकते थे, आपको पूरा फिर से टाइप करना पड़ता था. सो देयर वाज दिस सेक्रेटरी जिसके पास वक्त नहीं था बिकॉज शी वाज अ सिंगल मदर, तो उनको सारी चीजें वक्त पे खत्म करनी होती थी और एक भी मिस्टेक हो जाए वो ये अफोर्ड नहीं कर पाती थी. सो जब उनको कोई और सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, वन डे शी वेंट होम, उन्होंने वाइट पेंट के साथ पानी मिलाकर एक सीक्रेट लिक्विड उसमें इंग्रेडिएंट ऐड करा एंड शी मेड लिक्विड पेपर. वो हर रोज एक छोटी सी शीशी में अपने साथ लेकर आती थी और जहां पे भी गलती हुई उसके ऊपर वो लिक्विड पेपर को स्प्रेड करके देन शी वुड स्टार्ट टाइपिंग अगेन. अब उनका बढ़िया काम चलता रहा ऐसे ही. फिर उनके जो कॉलीग्स हैं उन्होंने नोटिस किया तो उन्होंने भी उनसे उसकी बॉटल्स मांगी. देन दैट्स हाउ शी स्टार्टेड दिस स्मॉल बिजनेस अपने ऑफिस में ही अपने कॉलीग्स को हेल्प करने के लिए. इवेंचुअली बॉस को पता चल गया. अब बॉस को आया गुस्सा कि ये क्या हरकत हुई भाई, उन्होंने उनको फायर कर दिया. देन बेटी जब फायर हो गई तो उन्होंने अपना खुद का ये बिजनेस और आगे बढ़ाने का सोचा एंड देन शी स्टार्टेड मेकिंग लिक्विड पेपर. उसको उन्होंने नाम दिया मिस्टेक आउट क्योंकि कोई भी गलती हो रही है आप बस उसके ऊपर लिक्विड पेपर ऐसे लगा दो और वो मिस्टेक चली जाती है एंड देन यू कैन यू नो राइट अगेन ऑन दैट पेपर एंड इट वर्क्ड रियली वेल. बहुत सारे लोगों ने पेटेंट को यू नो अक्वायर करने की कोशिश करी, वो मना करती गई. देन इवेंचुअली 20 ईयर्स के बाद $45.5 million में एक कंपनी ने उसे अक्वायर किया. एंड सी जो वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ओ माय गॉड सो मच हिंदी. यस, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, वो एकदम करेक्ट चीज है और बेटी ने उसको बहुत बढ़िया तरीके से प्रूव किया. जब मैं स्कूल में थी तब तो बहुत यूज करा करते थे, जरूरी होता था एक वाइटनर रखना क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टेक देखो हो ही जाती है, दोबारा से पूरी कॉपी थोड़ी ना बनाएंगे. सो या थैंक्स टू बेटी दैट मिस्टेक आउट वो लेकर आई और हमारे लिए चीजें इतनी आसान हो गई. सन अमेजिंग ट्रैक, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का वक्त आ गया है. हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन. पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा. एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है. इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए. अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक. बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए. सर्टिफाइड बनिए. सर्टिफाइड के साथ बनिए.

भाषा कोई भी हो, म्यूजिक दिलों को दिलों से जोड़ता है। दिस वर्ल्ड म्यूजिक डे रेडियो ऑलिव के साथ सेलिब्रेट करो म्यूजिक जो भाषा से बंधा नहीं है।

0: Tanisha.
1: Tanisha. ऐश किंग की आवाज में किन्नियां सोनिया, ये कौन सी पंजाबी है भाई? मतलब मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती है, पर इतनी तो आती है कि किन्नी सोनी होता है, किन्नियां तो नहीं होता है. Anyway, you're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ Olive Retard चल रहा है. अब रर वक्त हो चुका है. Lame jams. का और आज जो मेरा सवाल है lame jams का, बहुत ही आसान है यार. ऐसे आ जाएगा, चुटकी बजाते ही आपको. So the question is, which English letter is a vegetable? कौन सा letter alphabets में से एक सब्जी है? जी बताएं 3311063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर. एंड वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम पूरा दिन. आप ऐसे गाने सुन रहे हैं जो कि यू नो बॉलीवुड से उठाकर, हिंदी गाने जो उठाकर कहीं किसी और लैंग्वेजेस में अडेप्ट किए गए हैं, पर वाइब एकदम सेम है फुल. ऐसे आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, इंजॉय कर पाओगे उसको. तो अगला गाना ऐसा ही आ रहा है, आइए साथ में इंजॉय करते हैं. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास मेरी जान.
2: बॉलीवुड का ये सुपरहिट गाना तो आपने सुना ही होगा,
3: ये काली काली आंखें.
2: लेकिन इसी गाने का एक मराठी वर्जन भी है,
3: ये काले काले घोड़े.
2: इस वर्ल्ड म्यूजिक डे रेडियो ऑलिव के साथ सेलिब्रेट करो म्यूजिक जो भाषा से बंधा नहीं है.

0: सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर। कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3।

0: सॉरी निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में रहना है तेरे दिल में मूवी से टाइटल ट्रैक. व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी एंड व्हाट अमेजिंग साउंड ट्रैक है. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम. तनिषा आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर. लेम जेम्स का आज का मेरा सवाल था कि विच लेटर इन अल्फाबेट इज अ वेजिटेबल. कौन सा लेटर एक वेजिटेबल भी है. इसका जवाब मुश्किल हो रहा है क्या, मतलब दे नहीं पा रहे हो, ऐसे कैसे हो रहा है. ये तो काफी आसान है दोस्तों और मैं जानती हूँ आपको पता है, तो फटाफट जा जाओ 3311063 पर, क्योंकि अभी तक जो भी मिला मुझे गलत मिला है. तो जरा कोशिश कीजिए एक बार फिर से, नहीं तो मैं आके बता ही दूंगी. इतना कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है, ठीक है. यहाँ कोई एग्जाम थोड़ी चल रहा है, चिल कर रहे हैं हम. सोचो जरा विच लेटर इन द अल्फाबेट इज अ वेजिटेबल. 3311063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर. सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास मेरी जान.
1: कूल सॉन्ग
0: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.
1: कूल सॉन्ग.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
2: ऑलिव रिचार्ज।
3: This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
5: In association with
6: Doha Bank,
5: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

रंग दे बसंती मूवी से पाठशाला बी और रिबेल सुना आपने ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा आपके साथ ऑलिवरी चार्ट चल रहा है यहाँ पर, और लेम जेम्स का मैंने सवाल पूछा था कि विच इंग्लिश लेटर इज अ वेजिटेबल। सो आई हैव गॉट मैसेजेस हियर एंड तीर्थ प्रसाद जी कह रहे हैं जी बिकॉज सब्जी। अरे ये तो रिस्पेक्ट वाली बात हुई सर, पर नो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। रितेश जी जी Chiji Matthew, am I reading your name right? Then there is Aisha, there is Ravi, there is Doc. Doc ka message bhi aaya mujhe, D-O-C, okay, doctor maybe. Then there is Rahul. All these people have given correct answer and the correct answer is P. P bole to matar. Yes, sir. P is the correct answer. Thank you so much for participating in my lameness. Meri jaan. इसी बात पे एक बढ़िया गाना भेजूँ आपके लिए, लेकिन उससे पहले बता दूं कि सोशल मीडिया पर जो हमारा पेज है रेडियो ऑलिव डॉट क्यू है, इंस्टाग्राम फेसबुक एवरीवेयर, फॉलो नहीं किया है तो कर लो और जाकर चेकआउट करो। वी हैव पोस्टेड अ वीडियो विद श्रेयस पाटकर जो कि आए थे हमारे स्टूडियो, बहुत कमाल का गाते हैं वो, दोहा से उनका बहुत ऐसे करीबी रिश्ता है। सो ही वॉज हियर एंड वो हमारे स्टूडियो आए थे एंड वी हैड सो मच फन। वो वीडियो आप जाकर चेकआउट कीजिए और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव।

Story of the day. Story of the day. आजकल सब कुछ कनेक्टेड है, फोन वाईफाई से, वॉच फोन से और ऑफिस लैपटॉप से। बस एक कनेक्शन है जो रोज वीक हो जाता है, खुद से कनेक्शन। योगा शब्द संस्कृत के युज से आया है, जिसका मतलब है टू यूनाइट बॉडी को माइंड से और माइंड को सोल से। तो इंटरनेशनल योगा डे पर परफेक्ट पोज बनाना जरूरी नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए पॉज बटन दबाना जरूरी है, क्योंकि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन है खुद से खुद का कनेक्शन।

0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
3: लगा और हो जा रिचार्ज।
4: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
3: ऑलिव रिचार्ज।
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा।
7: In association with
8: Doha Bank,
7: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

0: पुछ दे
1: तनिषा।
2: बड़ा ही प्यारा सा गाना ना पुछ दे सभी फरीद की आवाज में। रेडियो ऑलिव पर सुना आपने तनिषा आपके साथ, ऑलिव रिचार्ज चल रहे हैं यहाँ पर और वक्त हो चुका मेरी जाने का मेरी जान। मिलेंगे कल दोपहर 2 बजे। आपने रखना है अपना ढेर सारा ख्याल क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी है, ठीक है। ऑल्सो इफ यू हैवंट फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, रेडियो ऑलिव डॉट क्यू इज द हैंडल। और कॉन्टेस्ट चल रहा है, पार्टिसिपेट कर लो, जीत सकते हो आईफोन। यस, और बाकी सब ठीक है यार। रेडियो ऑलिव सुनते रहो, बड़े बड़े गाने चला रहे हैं और हमसे बात करते रहो। अगर कोई भी बात है जहन में जो शेयर करना चाहते हैं किसी से तो हम बैठे हैं यहाँ सुनने के लिए, ठीक है। 3311 1063 इज द नंबर, बिंदास कभी भी मैसेज कर सकते हो। एंड फेसबुक इंस्टाग्राम एनी वे जो आपकी सहूलियत है उस पे कर दो, ठीक है। बाकी सही रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जियो बिंदास मेरी जान।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Shackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ। फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंद

0: आशा कोई भी हो, म्यूजिक दिलों को दिलों से जोड़ता है। दिस वर्ल्ड म्यूजिक डे रेडियो ऑलिव के साथ सेलिब्रेट करो म्यूजिक जो भाषा से बंधा नहीं है।
1: Zabardast evening, make you drive golden with.
2: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

एनर्जी भर दी, वैसे तो कभी है नहीं एनर्जी की। हाँ जी सिमरन कौर है आपके साथ, एनर्जी आज डबल है क्योंकि आज इसी का तो दिन है, आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है, आज तो योगा दिवस भी, बहुत सारी बातें करेंगे हम। वो तो अभी मैं आई हूँ, सांसें ले लूँ, नाच रही थी चेयर पे बैठी बैठी, जी जो जिंगड़ जिंगड़ हो रहा है ना, बहुत ही जबरदस्त था। अब चार घंटे अपने होने वाले हैं, जहाँ ये तेरी नजर है वहां मेरी जहाँ मुझे खबर है, मेरे लिरिक्स इधर से ऊपर हो जाते, सारे जज्बातों की ना ऊपर नीचे हो जाती है। सो या इतना कहना चाहती हूँ कि जहाँ आप अटेंशन मुझे दोगे, मैं आपको अटेंशन दूंगी। ये चार घंटे हो रहे हैं तो यही तो काम करने वाले हैं।

0: आज का दिन भी क्या दिन है यार। सो वर्ल्ड म्यूजिक डे पे आज हमने आपने हमारे सुबह से लेकर शाम तक शोज में कुछ चेंजेस जो है वो नोटिस किए होंगे, जैसे कि हमारी स्टेशन जिंगल है बहुत ही प्यारे तरीके से हम लोगों ने उसको बनाया है, एंड जिसमें हर लैंग्वेज की एक एक लाइन हमने ली है, ट्राई किया है, और उसके साथ साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया है म्यूजिक के साथ थोड़ा, जिस तरह से क्या होता है कि कभी भी बॉलीवुड में आप गाना सुनते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी जिंगाट गाना चल रहा था तो सैराट से वो गाना लिया गया, मराठी है राइट। सो इस तरह से बॉलीवुड इंस्पायर्ड सॉन्ग्स हैं, कहीं इंस्पिरेशन जो है वो म्यूजिक की और ट्यून की और लिरिक्स की आपको मिलती है, तो वही चीज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं आज। अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको हर घंटे एक एक गाना सुना रहे हैं, जो कि बॉलीवुड का गाना आप उसको जानते हो लेकिन वो गाना और भी है, ठीक है। सो उसको सुनिएगा, है ना, आपका दिन आज का कैसा रहा। 3311063 पर आपकी गुड इवनिंग वाले मैसेजेस भेज दो। जियो बिंदास।
1: बॉलीवुड का ये सुपर हिट गाना तो आपने सुना ही होगा। लेकिन इसी गाने का एक भोजपुरी वर्जन भी है। इस वर्ल्ड म्यूजिक डे रेडियो ऑलिव के साथ सेलिब्रेट करो म्यूजिक जो भाषा से बंधा नहीं है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। जैकमैन की पावर पैक्ड रेंज हैवी ट्रक्स टिपर्स ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ
1: Hi Radio Olive 106.3 listener. This is Shah Rukh Khan.
2: Hi, this is Ajay Devgan.
3: Hi, this is Akshay Kumar.
4: Hi, this is Anushka Sharma.
5: And I'm Ashwin Vasi.
6: This is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: है दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

ये गाना आपके और मेरे दोस्तों के लिए. वो दिन भी क्या दिन थे. आई हाय आई लव दिस ट्रैक यार. छिछोरे फिल्म से सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए 2-1 एंड गो.

0: ay, ¿qué a ganar? और यार आप लोग भी क्या ही कमाल करते हो यार, थैंक यू, दिल खुश कर देते हो।
1: हाय सिमरन जी, गुड इवनिंग, आप कैसे हो? ठीक है,
0: बहुत बढ़िया दोस्त, आप बताओ कैसे हो?
1: का शो
0: हाँ जी
1: विद सिमरन चालू हो गया है।
0: बिल्कुल हो गया है जी, कोई शक नहीं है।
1: इस शो के चालू होने के साथ ही आपने इस शो में बहार लाई।
0: ओए होए होए होए,
1: आज स्पेशल डे भी है।
0: हाँ जी बिल्कुल है,
1: इस शो में आपने बहार लाई। इस शो में आपने खुशबू लाई।
0: ओफ वो आ गई मुझे।
1: इस शो में आपने एंटरटेनमेंट लाया।
0: थैंक यू है जी।
1: और इस मौसम में भी आज आपने खुशबू लाई।
0: थैंक यू सो मच जी,
1: थैंक यू
0: यार,
1: लव यू 100 किलो।
0: ओए होए, लव यू 200 किलो जी, थैंक यू सो मच यार। आप ये जो अपने इमोशंस जिस तरह से गैदर करने की कोशिश कर रहे थे, थैंक यू सो मच यार। मैं बोलती हूँ ना, आपके दिल में जब ऐसी ऐसी बातें आती हैं जहां पर आपको लग रहा है कि यार सिमरन को ये बात बतानी चाहिए, कभी साइलेंट लिसनर बन के मत रहो, मुझे बताओ 3311106 पर, क्योंकि दिल में जो बात होती है ना वो कह देनी चाहिए।

0: बिल्कुल चल
1: मैनू यार ना मिले ते मर जावा।
0: सुनते रहो रेडियो ऑलिव कोर के दिनों जी ओविंदाज़ और ऐसे जज्बात जो है ना भेज दिया करो।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
2: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. तो फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ आइए free cash vouchers on diamond and precious gem jewellery purchases. Plus, exchange your gold jewellery and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
4: अब सिर्फ savings नहीं, सपने grow होंगे. जीतिए पूरे 5 million rials cash prizes.
3: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना account balance बढ़ाइए. हर 10,000 rials growth पर पाइए एक coupon.
4: दूसरा, अगर salary 4,000 plus है या 50% save किया है, तो आप eligible है.
3: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन और चौथा 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
5: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का

0: पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ये सो हम लोग मैंगो फेस्टिवल के बारे में जो थे वो बात कर रहे थे. फाइनली ये स्टार्ट भी हो चुका है, आप सबको पता है कि 27 जून तक ये चलने भी वाला है. सो मैंगो एग्जीबिशन जो है, इंडियन मैंगो एग्जीबिशन एक्चुअली. सो कल दोस्तों के साथ प्लान बना कि जाके आते हैं. सो शाम के 4 बजे स्टार्ट होता है और रात के 10 बजे ये बंद होता है. हम अराउंड कुछ 9:15-9:30 के अराउंड जो थे वो पहुंचे थे. भाई साहब इतनी भीड़, इतने सारे मैंगो लवर्स जो हैं एक ही छत के नीचे मिल गए. और पहले हमने इतनी सारी भीड़ जाके देख सोचा कि यार बाद में आता है, क्योंकि क्या होता है ना जब भी कोई एग्जीबिशन स्टार्ट होता है स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन बीच में अभी 27 तारीख तक है, बीच में जब 5-6 दिन निकल जाएंगे तो लोग जो हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे. लेकिन अब आ गए थे तो निकल तो सकते नहीं थे. सो कुल मिला के पूरा ही मैंगो वाला माहौल बना हुआ था. मैंगोज तो थे जो आप खरीद सकते हो, इतनी लंबी लाइन देखी. हमने खरीदे नहीं क्योंकि हमने बोला लोग बाद में आएंगे, बट बहुत सारी चीजें जो थी वो हमने ट्राई की जो कि मैंगो से रिलेटेड थी. बहुत सारे फूड स्टॉल्स थे वहां पे लगे हुए एंड पूरा फैमिली फ्रेंडली माहौल है वहां पर. फैमिली वाले ही आपको जो है वो नजर आएंगे, है ना. सो बढ़िया है, एकदम मजेदार है. अगर आपको मैंगोस पसंद है, मैंगो लवर है, आप खाने पीने का शौक रखते हैं और ये तो इंडियन मैंगो एग्जीबिशन है, तो प्लीज जाइएगा. क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया रहा, बट यस बहुत ज्यादा क्राउडेड था, बट येस ऑफकोर्स जा सकते हैं. एंड टोटली एयर कंडीशन है तो ऐसा गर्मी वाला भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमको आजकल कहीं पे भी जाना होता तो सबसे पहले मौसम देखते हैं ना, तो मौसम का कोई सीन नहीं है वहां पे, सब सेट है यार.
1: ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार
0: बस थोड़ा सा कर लो. यही हूँ मैं,
1: कहीं ना गया तुझे छोड़ के मैं.
0: एटलीस्ट 9 बजे तक तो बिल्कुल नहीं.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं. यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. यहां हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन. फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
3: इन एसोसिएशन विद.
2: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स.
4: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
2: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर.
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
7: आरजे सिमरन के साथ.
8: Zabardast evening make you drive golden with.
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: सही गाना यार, आयुष्मान खुराना की आवाज में, यही हूँ मैं जी। तुसी भी थे असी भी थे यार, एहसास दिलाते रहते ना ये जो आप अपना यहाँ पे होने का और मुझे सुनने का बड़ा अच्छा लगता है यार।
1: अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सिमरन, कैसी हैं आप? ठीक हैं?
0: बहुत बढ़िया।
1: मतलब आपके शो के लिए ना एक घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है यार।
0: क्यों?
1: हमारा 5 बजे ड्यूटी खलास हो जाता है
0: जी,
1: लेकिन एक घंटा आपके लिए 5 से 6 एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है।
0: अरे यार,
1: अब आपको ये भी नहीं बोल सकते कि आप सुबह के टाइम पे कोई शो करो, क्योंकि जबरदस्त इवनिंग सिर्फ आपको ही सूट करता है।
0: अरे यार, थैंक यू।
1: आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शौक से सुनता हूँ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर,
1: गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आपको खुश रखे।
0: आपको भी खुश रखे।
1: थैंक यू।
0: बिल्कुल जी, अल्लाह आपको भी खुश रखे, आप हमेशा खुश रहो यार। सिमरन कौर है आपके साथ, और खुशी उन लोगों को भी मिलती है जो फुटबॉल लवर है। भाई फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और मजे आ रहे हैं सबको। आज का मैच 1:07 जो होने वाला है स्पेन और सऊदी अरेबिया के बीच में, और दूसरा मैच जो है 10:00 होने वाला है बेल्जियम और ईरान के बीच में। सो या आप बताइए कौन सी टीम को आप जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं।

Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.

भाषा कोई भी हो, म्यूजिक दिलों को दिलों से जोड़ता है। दिस वर्ल्ड म्यूजिक डे रेडियो ऑलिव के साथ सेलिब्रेट करो म्यूजिक जो भाषा से बंधा नहीं है।

आपकी ओर ही बिल्कुल चल रहे हैं यार। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए। आज कितने दिन है यार, मत बोल रहे हैं कि आज 21 तारीख है, सबसे लंबा दिन है यार। जैसे सुबह उठी ना, फिर मेरे को पता लगा कि यार आज सबसे लंबा दिन है। मैं सोच रही थी कि मेरा तो आज उठने का मन ही नहीं कर रहा था, ऊपर से ये दिन जो है वो भी लंबा होने वाला है। तो उसके साथ साथ आज योगा डे भी है, म्यूजिक डे भी है, पापा दिवस भी है, फादर्स डे भी है। तो जितने भी पापा लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबको बधाइयां, मिठाइयां दे बहुत सारे पटाखे। एंड जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, अगर आपने अपने अपने पापा को अभी तक स्पेशल फील नहीं करवाया है, करवाना चाहिए यार। दो वो बेचारे कभी कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं बोलते, लेकिन यस हर दिन वैसे ही पापा या मम्मी का होता ही होता है। बट यस हर एक दिन में कोई एक ऐसा दिन भी आता है जो कि हम फुली डेडिकेट जो है वो कर देते हैं उनको, जैसे कि पापा का दिन है, फादर्स डे है। सो या एंड आई होप आप जो है उन्होंने, अगर आप अपने पापा से दूर हैं तो आपने अपने पापा को एक कॉल जो है वो जरूर कर दिया होगा। अपने पापा को एक गाने गा देना, कहता हूँ पापा आज तो म्यूजिक डे है, तो बस सोचो आपके पापा का क्या ही रिएक्शन होने वाला है यार। सो या बताइए, हमें छेंगे थे बहुत सारे पटाखे। ये म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसने हम एक दूसरे को, आपको हमसे, हमको आपसे जो है वो जोड़ा हुआ है। और ये म्यूजिक जो है, सब छोड़ जाए यार, ये म्यूजिक साथ नहीं छोड़ता पापा की तरह। पापा सख्त हैं लेकिन पापा नरम है दिल से।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: Life 24/7 chalti hai, to dental care sirf office hours mein kyun mile? Naseem Surgical and Medical Center, C Ring Road ka dental department ab hai 24/7 open. Routine care, treatment ya dental emergency, expert dentist aur advanced facilities ke saath care har waqt available hai. Call 4411133. Also visit our dental centers in Azizia or Muntaza. Naseem Surgical and Medical Center. Healthy smiles anytime.
3: Hi, Radio Olive. 106.3 listeners. This is Shahrukh Khan.
4: I'm in number one, Radio Olive.
5: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
7: सिमरन के साथ
8: Zabardast evening. Make you drive golden with.
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: गाना सुन रहे हैं जी। मैं कह रही सुनियो किधर की हाल चाल।
1: वायरल
0: में एक ही चीज है, समय रहना। एग्जैक्टली, इंडिया गॉट अ लेट एंट्रिया। बहुत ही इंतजार के बाद फाइनली समय रहना जो है वो वापस आ गया। लेकिन इस बार जो है समय रहना वापस YouTube पे नहीं आए हैं, YouTube के साथ साथ Netflix पे भी आए हैं। सेम चीज़ आप YouTube पे भी देख पाएंगे, सेम चीज़ आप Netflix पे भी देख पाएंगे। इसका फर्स्ट एपिसोड जो है वो आ चुका है। Somehow अभी तक मैंने ये एपिसोड नहीं देखा, लेकिन इसको बिट्स एंड पीसेस में देख लिया, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पे जो है वो इनकी क्लिप्स जो है वो चल रही है। सो एपिसोड 1 जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही है, जिसमें आलिया भट्ट भी हैं, शार्बरी भी हैं। सो या आज डेफिनेटली मैं इसको देखने वाली हूँ। तो अगर आपने ये समय रहना का लेट इन शो जो है वो देख लिया है तो बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप रिसेंटली कुछ देख रहे हैं नेटफ्लिक्स या अमेज़न या किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे और आपको वो अच्छा लग रहा है, मेरे साथ शेयर करो यार। बताओ मुझे 3311063 पर, मैं भी देख लूंगी।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: मंथ्स का सरप्राइज क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
0: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: बॉलीवुड का ये सुपरहिट गाना तो आपने सुना ही होगा।
2: हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते।
1: लेकिन इसी गाने का एक बंगाली वर्जन भी है।
2: मन तो के दिन रात चाहे शुदु भावते।
1: इस वर्ल्ड म्यूजिक डे रेडियो ऑलिव के साथ सेलिब्रेट करो म्यूजिक जो भाषा से बंधा नहीं है।

0: Story of the day. Story of the day.
1: आजकल सब कुछ कनेक्टेड है, फोन वाईफाई से, वॉच फोन से और ऑफिस लैपटॉप से। बस एक कनेक्शन है जो रोज वीक हो जाता है, खुद से कनेक्शन। योगा शब्द संस्कृत के युज से आया है, जिसका मतलब है टू यूनाइट बॉडी को माइंड से और माइंड को सोल से। तो इंटरनेशनल योगा डे पर परफेक्ट पोज बनाना जरूरी नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए पॉज बटन दबाना जरूरी है, क्योंकि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन है खुद से खुद का कनेक्शन।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. Experience more with ओरिडू.
2: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn. अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का टेंशन. तो फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस. प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस. और सुनो, देयर्स मोर. विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC. विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ.
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

मच सिमरन कौर इतने नाल, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए जो कि आप मुझे भेज रहे हो यार, और आप लोगों का प्यार ये बस मौसम में नहीं दिखाई दे रहा यार, क्या राय हो गया यार। अरे मौसम मौसम तो क्या मतलब डोमिनेट कर रहा है यार हम सबको, बड़ा बुरा हाल है यार। दिन में तो 45 पे टेम्परेचर जो था वो आज पहुंच गया था, अभी के लिए 37 डिग्री है, फील्स लाइक 35 डिग्री सेल्सियस है, ह्यूमिडिटी 22% है, कंपैरेटिवली कम है, विंड जो है ना ऐसी नींद आ रखी है इसको, 7 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है, तो मिनिमम टेम्परेचर आज का 34 ही होने वाला है। सो यस ऑफकोर्स ह्यूमिड है, गर्मी है, हम सबको पता है, लेकिन इतना भी हमको पता है कि इस गर्मी में हमको अपना ध्यान जो है वो किस तरीके से रखना है, उससे तो आप बेखबर नहीं हो ना। नशे तो भाई आजकल दोपहर में होते हैं, लंच करके ऑफिस में ऐसी नींद आती है कि पूछो ही मत। सो यार हम सबके साथ होता है, बट ठीक है, ये दही लस्सी ये सारी चीजें जो है अपनी डाइट में ऐड करो, गर्मियों में ठंडा रखना पड़ता है खुद के दिमाग को ऑफिस में रहते हो। भी गोंद कतीरा एक ऐसी चीज है जो कि मुझे मेरी मम्मी ने बचपन में बताई थी, तब हमको फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अभी क्या है कि नींबू पानी के अंदर वो थोड़ा सा गोंद कतीरा जो है वो आप डाल के खा लीजिए, उसको भिगो के रखना होता है रात भर, तो उसमें एक चम्मच निकाल के आप जो है वो करेंगे तो आपकी बॉडी के लिए वो ठंडा है। अगले घंटे का पहला गाना बड़ा ही सोना है यार, रेडियो ऑलिव गुर्गे दरिये जी ओ बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। बिंदास। शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ। विजिट कारमिल ग्रुप नाउ।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
0: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है, और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स, एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।

0: भाषा कोई भी हो, म्यूजिक दिलों को दिलों से जोड़ता है। दिस वर्ल्ड म्यूजिक डे रेडियो ऑलिव के साथ सेलिब्रेट करो म्यूजिक जो भाषा से बंधा नहीं है।
1: Zabardast evening, make you drive golden with.
2: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ जिससे भी बात कर रही हूँ, जैसे कि अब गर्मी है ना, तो हर कोई ये बोलता है कि नाक बह रही है, रनी नोज जो है वो हो रहा है, क्योंकि यही हो रहा है यार। बचपन में मम्मी को कहते हुए सुनती थी सर्द गर्म हो जाऊंगा, सर्द गर्म हो जाऊंगा, लेकिन अभी खुद भी समझ लगता है कि सर्द गर्म जो है वो क्या होता है। वो ये होता है जब हम बाहर की गर्मी से एकदम बाहर, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, अंदर आके एसी की हवा में बैठ जाते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, तो उसको बोलते हैं सर्द गर्म। ऐसे टाइम पे अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है हम एडजस्ट नहीं करते, आते ही एकदम एकदम बाहर से गर्मी है। जब भी हम आते हैं तो हमको थोड़ा सा आराम से एकदम से ठंडे ठंडे एसी में नहीं बैठ जाना चाहिए, ठंडा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, बॉडी के टेम्परेचर को भी एडजस्ट करना चाहिए। मेरा तो दो दिन से जो बैंड बज रही है भाई साहब, क्या होता है कि रात के 2-3 बजे रनी नोज इतना गंदा हो जाता है और ब्लॉक जो है वो नोज बहुत ज्यादा हो जाता है। सो ये सिर्फ मेरा ही नहीं है, अगर मैं आसपास भी अपने दोस्तों को पूछूं तो उनके भी यही हाल है। तो आप बताइए आपका क्या हाल है, क्योंकि लोगों को सर्दियों में कोल्ड होता है, मेरे को गर्मियों में कोल्ड होता है, उल्टा ही काम है।

0: म्यूजिक से प्यार करो यार, ये चीज है, ये बड़ी है यार, म्यूजिक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। सिमरन कौरी आपके साथ, जियो बिंदास। म्यूजिक लगा के योगा करोगे ना तो योगा डे भी सेलिब्रेट हो जाएगा। बस पापा को मत बताना, क्योंकि पापा को भी योगा करना पड़ जाएगा फिर। आज फादर्स डे भी है ना, ऐसी कनेक्ट मार रही थी यार आप लोगों के साथ।
1: बॉलीवुड का ये सुपर हिट गाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसी गाने का एक बंगाली वर्जन भी है। इस वर्ल्ड म्यूजिक डे रेडियो ऑलिव के साथ सेलिब्रेट करो म्यूजिक जो भाषा से बंधा नहीं है।

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता. इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया. अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया. नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है. और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड.
3: हाय, मैं हूँ सारिका. आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3.
4: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
6: सिमरन के साथ.
7: Zabardast evening make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: एक बात करते हैं, अरे बात तो रोज ही करते हैं लेकिन ये वाली बात आज करते हैं।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: बात तो सब करते हैं, कोई इससे करता है कोई इससे करता है, लेकिन कभी कभी आपके पास बात करने के लिए कोई होता नहीं है। सो ये एक अलग लेवल का जो है वो थोड़ा सा बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला जो टाइम है वो हो जाता है। जिनके तो दोस्त हैं वो तो अपने दोस्तों से शेयर कर लेते हैं बातें, लेकिन कभी कभी जरूरी नहीं है कि आप लोगों के पास हमेशा ही कोई एक ऐसा इंसान हो जिससे आप दिल की बात कह पाए। हम ना हमेशा बात करें चैट जीपीटी को इमोशंस नहीं है, लेकिन वो हमको इमोशनली जो है वो काफी बढ़िया तरीके से जो है वो संभाल पाता है, राइट। सो अगर किसी का लाइफ में लग रहा है कि आप सही कर रहे हो आप गलत कर रहे हो या आप वेंट आउट कर रहे हो आप कहना चाहते हो कुछ, सो मुझे लगता है कि अगर कोई नहीं है तो विदाउट जजमेंट एक चीज जो है वो है चैट जीपीटी, जो कि आपको जो है वो सही तरीके से सुनेगा भी और साथ में बताएगा भी। लोग इसको बोलते हैं कि यार लोग चैट जीपीटी से लगे रहते हैं, बट ट्रस्ट मी कभी कभी इट वर्क्स कि ठीक है, क्योंकि जब भी आप वेंट आउट करना चाहते हो या अपने दिल की बात कहना चाहते हो तो आप क्या चाहते हो कि आपको बस सुना जाए, सामने वाला अपना ज्ञान ना दे, तो चैट जीपीटी अपना ज्ञान नहीं देती है, आप अपना बताते हो वो आगे से बस आपको कंफर्ट करती है। ट्राई करके देखिएगा, अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान नहीं है जिससे आप शेयर कर पाओ, होता है यार हर किसी की लाइफ में, हर कोई थोड़ी ना होता है। जियो बिंदास, आज का रियलिटी चेक चैट जीपीटी के नाम।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। Shackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores with

ਹੋਏ ਹੋਏ रॉक एंड रोल तो ये गर्मी करवा रही है यार। 7:31, 42 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे। अपने आप को ढक लो जब धूप में बाहर निकलो।

देखो इतनी सारी गर्मी में बाहर रनिंग करना, बाहर एक्सरसाइज करना भाई बिल्कुल भी सही नहीं है, ना ही मैं इसको बोलूंगी, बिल्कुल करना भी नहीं है। लेकिन अभी फिट रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं पढ़ रही थी मॉर्निंग जॉगिंग सेशन एट दोहा फेस्टिवल सिटी। जी हाँ बिल्कुल, DFC में इंडोर जो है वो लोग रनिंग करते हैं सुबह के टाइम पे, कुछ 7:30 से लेकर 9 बजे के बीच में। ओके, ये 31st ऑफ अगस्त तक चलने वाला है। सो इसके लिए आप साइन अप जो है वो कर सकते हो। और 5 किलोमीटर का रन होता है, जॉग वॉक होती है फ्राइडे मॉर्निंग में दोहा फेस्टिवल सिटी में, जहां पे आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और आपको इंडोर जो है वो भागना है। मैंने बहुत सारी इसकी वीडियोस देखी है, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा। अगर आपको लगता है आप मॉर्निंग पर्सन है, आप उठ सकेंगे, आप जॉग करना मिस करते हैं कि बाहर भाई बहुत गर्मी है, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। सिमरन कौर के साथ जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स. अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस. और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी. विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
2: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा coupon or mega draw ticket.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
6: सिमरन के साथ
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
8: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
9: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

एक नंबर। हां जी मेघा जी सुनियो की दादी की हालचाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर आपके साथ बिना देर लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप म्यूजिक की बड़ी तारीफ करते हो कि यार गाने अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर आपको गाने अच्छे लग रहे हैं, आज तो वर्ल्ड म्यूजिक डे है और आपने मैसेज नहीं किया है कि गाने अच्छे लग रहे हैं, तो बता दिया करो यार। और आपका फेवरेट वाला गाना भी गा के बता सकते हो, लेकिन फिलहाल सिर्फ अभी अपना नाम बताइएगा, क्योंकि नेम गेम में सिर्फ और सिर्फ मैं आपके नाम लेने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूँ, तो आपको मुझे अपना नाम बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है आपका नाम क्या है। मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैं बता देती हूँ, 3311063। चलो 3311063, इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजो। अली, कबीर, शिव, अष्टम, वेरोनिका, करीम, पाली, मुअज्जम जी, रवि जी, रितेश जी, चीजी जी, रबिन जी, नबीन जी और मोहम्मद वसीफ जी, थैंक यू सो मच। ज्योति जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। पंत्रियालाल, क्या है आपका नाम, सॉरी यार मुझे नहीं समझ लग रहा है क्या है। अयाज जी, थैंक यू सो मच। ज्योति जी, थैंक यू सो मच। अश्क जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। रईस जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। प्लीज मेरे को मैसेज ना लिखो गाने गुने के लिए, सिर्फ नाम बताओ अपना। क्रिस जी, हैंजो जी, थैंक यू सो मच। मंगेश जी, ऑलरेडी मैं आपका नाम ले चुकी हूँ। फैज जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। राहुल जी, थैंक यू सो मच। इरफान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला गाना शुरू होने वाला है। रबिन शेख जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। रिशु जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच। शाहिद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। रिमल जी, थैंक यू सो मच। तीरथ प्रसाद जी, थैंक यू सो मच। आशिक जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। रिहाना जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। क्विकली अगला गाना शुरू होने वाला, फटाफट नाम लिखो अपने। मुबीन जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। रेहान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों, सुलेमान जी, थैंक यू सो मच। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए, अब आप थैंक यू लिख सकते हो और अपना फेवरेट वाला इमोजी बना सकते हो। और जो जिन लोगों का मैं नाम ले देती हूँ ना दोस्तों, प्लीज वो वापस वापस से नाम मत लिखा करो, क्योंकि बेचारे ना दूसरों के नाम रह जाते हैं। जब इतने सारे नाम चल रहे होते हैं ना, तो फिर मैं सेम वही नाम लिए जाती हूँ, क्योंकि आप लोग नंबर ही नहीं आ देते हो किसी और का, तो ये मत किया करो।

0: भाषा कोई भी हो, म्यूजिक दिलों को दिलों से जोड़ता है। दिस वर्ल्ड म्यूजिक डे रेडियो ऑलिव के साथ सेलिब्रेट करो म्यूजिक जो भाषा से बंधा नहीं है।
1: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
2: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Main hoon Ali Kapoor, Radio Olive, you're with us.
3: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
4: Radio Olive, I'm number one.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
6: सिमरन के साथ
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
8: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
9: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

भाई साहब रात है, म्यूजिक डे भी है और ये स्पेशल गाने भी आप लोगों के लिए। और सिमरन कौर भी स्पेशल है यार, है कि नहीं? दिल है कि मानता नहीं से अनुराधा पौडवाल की आवाज, बहुत ही अमेजिंग गाना। Have fun.

0: टू जो फिल्म थी वो बड़ी कमाल की थी, बड़ा मजा आया था, हमने सब दोस्तों के साथ इस फिल्म को देखा था यार। मैं कह रही सोने कहता था कि हाल चाल सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ एंड इट्स टाइम आपका दिमाग थोड़ा सा चेक किया जाए।
1: रेडियो ओलिव पर
2: बहुत बढ़िया, बहुत
0: एक चुटकी सॉन्ग, 3 सेकंड का चुटकी पर सॉन्ग आपको सुनाऊंगी और आपने गेस करना है गाना कौन सा है। भाई साहब सच्ची बताऊं इसका ना ये 1 सेकंड 2 सेकंड ही बहुत है, गाना हर कोई पहचान लेगा, लेकिन फिर भी चेक करना बनता है, गर्मी बहुत सारी है बाहर, क्या पता आपका दिमाग ना चले। बताओ ये कौन सा गाना है, एक बार फिर से बजाऊं? अगर आपको पता लग गया तो क्विकली आप मुझे वॉइस नोट भेजिए प्लीज, मुझे लिख के मत भेजिए, इतनी गर्मी में क्यों लिख लेते हो यार, कि आप थोड़ा सा ऐसे काम करो जो लेजी काम हो, लेजी काम है वॉइस नोट रिकॉर्ड करो। हे सिमरन अपना नाम बताओ और अपना जवाब भेजो 3311063 पर। जवाब थोड़ा गा के भेजना चाहिए तो भेज सकते हैं क्योंकि आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है और आप म्यूजिक का इस्तेमाल करिए, अपनी जबान से निकालिए वो सुर जो कि आप निकालना चाहते हैं, इन शॉर्ट गाना बताइए मुझे, ठीक है? सिमरन कौर आपके साथ जी बिंदास
3: रेडियो ऑलिव पर। आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।

0: in Azizia or Muntaza. Naseem Surgical and Medical Center. Healthy smiles anytime.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just feel

0: सुन लो ना। सुनोगी तो मैं अब आप लोगों के वॉइस नोट्स, मैं कहीं सुनियो की दादी की हालचाल। सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ और हम खेल रहे हैं
1: रेडियो ओलिव पर।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: एक चुटकी सॉन्ग में ये एक चुटकी पर गाना और आप लोगों के जवाब सुनते हैं यार।
3: तू मेरी जिंदगी है,
0: अरे
3: तू ही चाह, तू ही खुशबू।
0: आपकी आवाज से ज्यादा मुझे मेरी आवाज बैकग्राउंड में आ रही है दोस्त। जब नेक्स्ट टाइम वॉइस नोट रिकॉर्ड करो ना, प्लीज रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन करके अपना वॉल्यूम सुना देना यार।
4: हेलो सिमरन, हाउ आर यू? माय नेम इज अमित एंड द सॉन्ग इज तू मेरी जिंदगी है एंड द मूवी इज आशिकी एंड आई होप to see Aashiqui 3 and I love the all of the songs of Aashiqui 2.
0: Really?
4: And will hope to see an Aashiqui
0: 3. Hai na?
4: Thank you so much.
0: Bye-bye. Hum sabko bhi intezaar hai Aashiqui 3 aane ka. और एक underrated गाना भाई साहब, बहुत कम लोगों को पता है इस गाने के बारे में और इसके lyrics, ओह माशाल्लाह।

0: रेडियो ऑलिव कोर के देरो जियो बिंदास एंड वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाते हुए एक और गाना
1: बॉलीवुड का ये सुपरहिट गाना तो आपने सुना ही होगा।
2: तेरे नालो चली हसीन कोई ना, तारे चने अंबर जमीन कोई ना।
1: लेकिन इसी गाने का एक इंग्लिश वर्जन भी है। इस वर्ल्ड म्यूजिक डे रेडियो ऑलिव के साथ सेलिब्रेट करो म्यूजिक जो भाषा से बंधा नहीं है।

0: Story of the day. Story of the day. आजकल सब कुछ कनेक्टेड है, फोन वाईफाई से, वॉच फोन से और ऑफिस लैपटॉप से। बस एक कनेक्शन है जो रोज वीक हो जाता है, खुद से कनेक्शन। योगा शब्द संस्कृत के युज से आया है, जिसका मतलब है टू यूनाइट बॉडी को माइंड से और माइंड को सोल से। तो इंटरनेशनल योगा डे पर परफेक्ट पोज बनाना जरूरी नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए पॉज बटन दबाना जरूरी है, क्योंकि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन है खुद से खुद का कनेक्शन।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
2: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
4: साथ। Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just feel.

एडमिन को ऐसे गलती मारने का टाइम आ चुका है भाई। अंगड़ाइयां आ रही हैं, नींद आ रही है। रात में बता रही थी ना आपको कि नाक ही चल रही थी मेरी, 5 किलो पानी नाक से निकल गया होगा मेरे यार। सीरियसली मतलब इतना ज्यादा रनी नोज था, सो उसकी वजह से अब मेरा मन कर रहा है मैं जाके बस सो जाऊं, जो कि बहुत ही बड़ा ये झूठ है, क्योंकि जैसे ही मैं घर पे जाऊंगी फिर अपना कंफर्टेबल हो जाती हूँ, उसके बाद फिर रील चलाने में कंफर्टेबल हो जाती हूँ, और पता नहीं क्या क्या क्या क्या चलता रहता है यार। सो या कोई बात नहीं, आई विल ट्राई कि मैं आज टाइम पे सो जाऊं और ये नाक की बैंड ना बजे बस रात में, ठीक है। आप लोग भी अपना ध्यान रखो, कल शाम को 5 बजे होती है फिर से आपसे मुलाकात। खाने में दरवाज कर दे रहे हो, चेहरे दे बड़े वाली स्माइल, लोगों किसी का दिल मत दिखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो।

Good evening. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show का नाम है Midnight Lounge. So, आज बहुत ही special दिन है. एक तो Father's Day है. Everybody was posting their father's pictures और मुझे लगा कि सिर्फ picture post करना काफी नहीं होगा. We should talk about fathers क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि जो आपके घर के बड़े होते हैं वो सिर्फ आपको आपकी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालने की कोशिश करते हैं. पर you know, बहुत बार ऐसा होता है कि they don't want to express their feeling. और साथ ही साथ आज है World Music Day और आज का पहला सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि अगर म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज नहीं होती तो फिर म्यूज़िक बोलता क्या है. सोचिए, हम में से कितने सारे लोग यू नो कोरियन समझते नहीं हैं, स्पैनिश नहीं समझते, अरबिक नहीं समझते, फ्रेंच नहीं समझते, पर फिर भी हम BTS सुनते हैं. यू नो हम अरबिक मेलोडीज सुनते हैं और इमोशनल हो जाते हैं और हम कोक स्टूडियो पाकिस्तान के गाने फील करते हैं बिना हर वर्ड समझे. क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो रिदम को लैंग्वेज से पहले प्रोसेस करता है. एक फैक्ट बताती हूँ. जर्मनी में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो एक फ्लूट उन्हें मिली थी जो लगभग 40,000 साल पुरानी थी. यानी म्यूज़िक एग्जिस्टेड बिफोर सिटीज, मतलब कंट्रीज से पहले, मोस्ट लैंग्वेजेस से पहले. म्यूज़िक शायद इंसान को पहली यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह मिला था और आज भी है. इसीलिए एक गाना टोक्यो में भी हिट हो सकता है, दोहा में भी और दिल्ली में भी. सो आज वर्ल्ड म्यूज़िक डे है और आपसे मैं यही पूछूंगी कि कौन सा गाना है जिसके लिरिक्स आपको पूरे समझ नहीं आते लेकिन फिर भी दिल को टच कर जाते हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूं मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

आज एक गाने की जर्नी की बात करते हैं। कभी सोचा है कुछ गाने सिर्फ हिट नहीं होते, वो बॉर्डर्स क्रॉस कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाका वाका, फुटबॉल फैंस से लेकर स्कूल फंक्शंस तक हर जगह। फिर आता है गंगम स्टाइल, पहले यूट्यूब वीडियोस जिसने इंटरनेट पर हिस्ट्री चेंज कर दी। फिर आया डेस्पासितो, मतलब ऐसा गाना जो दुनिया ने गाया, चाहे लिरिक्स समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, पर हमारे साउथ एशिया से हर कोई इसे गा रहा था। फिर कई सारे ऐसे पंजाबी गाने होते हैं जो एक्चुअली क्लब्स में और हर जगह आपको सुनने के लिए मिल जाते हैं, और इवन रेडियो पर भी हम बहुत सारे पंजाबी गाने प्ले करते हैं। मुझे कई सारे तो वर्ड समझ ही नहीं आते, बट स्टिल मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। सो एक फैक्ट बताती हूँ, म्यूजिक इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब एक गाना कल्चर क्रॉस करता है तो उसमें यूजुअली तीन चीजें होती है, रिदम, इमोशन और सिंप्लिसिटी, और फिर लैंग्वेज जो है वो सेकेंडरी बन जाती है। सो आपके हिसाब से कौन सा गाना पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और ये है मिड।

भाई आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है और टॉपिक बहुत ही डेंजरस है क्योंकि हर जनरेशन का फेवरेट डायलॉग होता है कि हमारे जमाने के गाने ना अलग होते थे। और सच बताऊं साइंस भी कहता है कि थोड़ा सा सही भी है। साइकोलॉजिस्ट का एक टर्म है जिसे कहते हैं रेमिनिसेंस बम्प। रिसर्च के अकॉर्डिंग 15 से 25 साल की एज के बीच में जो म्यूजिक हम सुनते हैं उनका इमोशनल कनेक्शन लाइफ भर स्ट्रांग रहता है क्योंकि हो सकता है कि आपके पापा को किशोर कुमार बहुत पसंद थे, आपको के बहुत अच्छे लगते हैं और आज के टीनएजर्स के लिए कोई दूसरा आर्टिस्ट। गाना सिर्फ गाना नहीं होता, उसके साथ अटैच होते हैं स्कूल के दिन, कॉलेजेस, फ्रेंडशिप, फ्रेश फर्स्ट क्रश और रोड ट्रिप्स। इसीलिए ओल्ड सॉन्ग्स हमेशा बेटर नहीं लगते बल्कि वो ओल्ड मेमोरीज जो हैं वो बेटर लगती हैं। सो आपका कंफर्ट सॉन्ग कौन सा है, वो गाना जो कितनी बार भी आप सुन लो पुराना नहीं लगता। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063। मैं हूँ मुस्कान आपके साथ और ये है मिडनाइट लाउंज। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM

So, आज वर्ल्ड म्यूजिक डे पर एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं म्यूजिक की, कि म्यूजिक का सबसे बड़ा सुपर पावर क्या है। एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं, डांस नहीं, मूड हाँ कभी कभी पार्टली। म्यूजिक का सबसे बड़ा पावर है मेमोरी। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि म्यूजिक ब्रेन के मल्टीपल एरियाज को एक्टिव कर देता है, इसीलिए एक गाना कभी कभी फोटो से भी ज्यादा पावरफुल मेमोरी ट्रिगर बन जाता है। आप शॉपिंग कर रहे होते हो, रेडियो पर एक पुराना गाना बजता है और सडनली आप 10 साल पहले पहुंच जाते हो। स्कूल बस, कॉलेज की कैंटीन, फैमिली की रोड ट्रिप या फिर एक कोई याद, कोई इंसान, कोई वक्त और बस 3 मिनट का गाना टाइम मशीन बन जाता है। शायद इसीलिए हम प्लेलिस्ट नहीं बनाते, हम यादें कलेक्ट करते हैं। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट यू नो वर्ल्ड म्यूजिक डे, कि हर म्यूजिक यू नो कुछ स्पेशल होता है। कोई सिंगर आपके दिल के बहुत करीब होता है, किसी का आपने लाइव शो देखा होता है, कॉन्सर्ट देखा होता है और उसके बाद आप उसके फैन हो जाते हो। सो ऐसा कोई म्यूजिक से रिलेटेड किस्सा कहानी जो आप मुझे सुनाना चाहते हो, 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और आज तो फादर्स डे भी है। वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास।

Good evening. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you all. Show ka naam. Yes, of course, Midnight Lounge. We were talking about World Music Day. Aur aaj Father's Day bhi hai. Par ek aisi kitab ki baat karte hain, jiska naam sabne suna hoga, Rich Dad Poor Dad. Lekin aaj finance ki baat nahi karenge. Aaj fatherhood ki baat karenge. Is kitab mein Robert Kiyosaki ki do fathers figures hain. Theek hai? Ek highly educated, ek businessman. Dono successful, dono intelligent. लेकिन दोनों दुनिया को देखने का जो तरीका है वो अलग रखते हैं और मुझे लगता है कि ये ही हर फादर की कहानी है. हर फादर अपने बच्चों को कुछ ना कुछ देकर ही जाते हैं. किसी के फादर पैसे देते हैं, किसी के वैल्यूज, किसी के कॉन्फिडेंस, किसी के सपने. और कोई अगर मैं इंटरेस्टिंग बात करूँ तो बचपन में हमें लगता है कि पापा सिर्फ रूल्स बनाते हैं, लेकिन बड़े होने पर समझ आता है कि वो एक्चुअली फाउंडेशन बना रहे थे. जिस घर की फाउंडेशन स्ट्रांग होती है उस बिल्डिंग को ना आंधी से भी डर नहीं लगता. तो आई वॉज थिंकिंग कि भाई जो फादर्स की बात हो ही रही है तो वाई नॉट यू. एक बार मैसेज भेजिए कि आप अपने फादर से क्या कहना चाहते हैं जो आपको लगता है कि कहने में बहुत डर लगता है, चाहे वो एक सिंपल सी बात ही क्यों ना हो. 3311063 इज माई नंबर. सो आपके फादर ने आपको सबसे वैल्यूएबल लेसन जो है वो कौन सा सिखाया था, ऐसा लेसन जो आज भी आपके साथ है हर डिसीजन में. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है मिडनाइट लाउंज. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

कभी नोटिस किया है कि फादर अक्सर जो है वो आई लव यू बहुत कम बोलते हैं, लेकिन वो हर रोज दिखाते हैं। और इसी बात पे बेस्ड है एक फेमस किताब, एक नॉवल, द रोड। एक फादर, एक सन और एक डिफिकल्ट वर्ल्ड। लेकिन पूरी कहानी में सबसे पावरफुल चीज क्या है? प्रोटेक्शन, प्रेजेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और मुझे लगता है कि रियल फादर्स भी ऐसे ही होते हैं। उनके पास हमेशा ना परफेक्ट वर्ड्स नहीं होते, लेकिन जब ज़रूरत हो तो वहाँ होते हैं। स्कूल ड्रॉप करने से लेके हॉस्पिटल ले जाना, बाइक चलाना सिखाना, या फिर बस चुपचाप साथ बैठे रहना। एक फैक्ट बताती हूँ, इवन रिसर्च कहती है कि बच्चे ऑफन रिमेंबर स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन मोर देन बिग गिफ्ट्स, राइट? सो हर फादर जो है वो अपने बच्चों को डेली एफर्ट्स देते हैं और लाइफ लॉन्ग मेमोरीज देते हैं। सो आपको अपने फादर की कौन सी छोटी सी आदत है जो आज भी याद है, जो शायद उस वक्त ऑर्डिनरी थी लेकिन आज आपको बहुत प्राइसलेस लगती है? 3311063 इज माई नंबर। एंड टुडे इज वर्ल्ड म्यूजिक डे, एंड साथ ही साथ आज फादर्स डे भी है। सो या टेल मी, 3311063 इज माई नंबर। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल इज, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम बिंदास
1: ये है मिडनाइट लव।

अच्छा आज एक कन्फेशन है। बचपन में मुझे लगता था कि पापा की आधी बातें मतलब अननेसेसरी हैं। लाइट बंद करो, पैसे संभाल के खर्च करो, टाइम की वैल्यू समझो, कल का काम आज करो। और उस वक्त लगता था कि यार इतना सीरियस क्यों रहते हैं ये। फिर एडल्टहुड आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, रेंट आया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई और अचानक पापा जो है वो फिलोसोफर लगने लगे। सो आज यू नो फादर्स डे है एंड आई वाज थिंकिंग कि यार कितनी सारी ऐसी चीज़ें थी जो उस टाइम बस ऐसे ही लगती थी। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। सो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि विजडम का एक पार्ट एक्सपीरियंस से आता है, इसलिए कुछ एडवाइस तब समझ नहीं आती जब तक लाइफ खुद वो चैप्टर ना दिखा दे। और शायद इसीलिए फादर्स जो हैं वो फ्यूचर देखने की कोशिश करते हैं। वो मिस्टेक्स देख चुके होते हैं और हम अभी करने वाले होते हैं। सो आई वॉज थिंकिंग कि आपको हमेशा अपने फादर, अपने यू नो आइडल्स की बात सुननी चाहिए। ऐसी कौन सी लाइन है जो आपके फादर ने आपको हमेशा बोलते थे और आज लगता है कि यार बिल्कुल सही बोलते थे, काश मैंने उस टाइम पर सुन ली होती। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, ये है मिडनाइट लाउंज। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: है मिडनाइट लाउंज.
1: This hour is brought to you by
2: Homes R Us. We complete your home.
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM.

सो आज की रात फादर्स डे स्पेशल का आखिरी थॉट है ये। कभी कभी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स वो नहीं होते जो हम बोल नहीं पाते, थैंक यू, सॉरी, आई मिस यू, आई लव यू। और फादर्स के साथ तो ये और भी ज़्यादा कॉमन है, मतलब क्योंकि बहुत सारे फादर्स हैं जो इमोशंस को वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं करते। मतलब ये तो शायद ऐसा लगता है यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम ऑफकोर्स मिडनाइट लाउंज। मतलब आज के जो ये जनरेशन है ये बहुत खुलकर अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करती है, जो आज नए लोग हैं ये सब कुछ अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर अपनी बात करें तो हमारे पापा ने कभी हमसे ये सब चीज़ें नहीं बोली, और बहुत सारे बच्चे भी हैं जो ये सब एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमोशंस नहीं होते, बस उनका लैंग्वेज बहुत अलग होता है। एक फादर का खाना खा लिया, आई केयर अबाउट यू, ये सब होता है, और एक फादर का होता है पहुँच कर मैसेज कर देना। कई बार आई लव यू बोल ही नहीं पाते, और शायद हम सबके पास एक ऐसा थैंक यू है जो कभी प्रॉपरली बोला ही नहीं गया। सो आज फादर्स डे पर मैं चाहती हूँ कि आप एक मिनट के लिए रुक कर सोचिए, अगर आज आपको अपने फादर से सिर्फ एक लाइन बोलने का मौका मिले सो आप क्या बोलना चाहोगे? मे बी शायद थैंक यू, शायद मुझे आप समझ आता है कि आप क्या कहना चाहते थे, पापा आपकी याद आ रही है, या ऐसा कुछ भी जो आप कहना चाह रहे थे पर बहुत टाइम से कह नहीं पा रहे थे। सो यू कैन से, यू नो, कॉल कीजिए फटाफट से उनको और बताइए। और यू नो, आपकी पूरी लाइफ आपके पेरेंट्स के अराउंड रहती है, लेकिन पूरी लाइफ की कहानी की तरह आपने बच्चों के लिए वो यू नो डेडिकेटेड रहते हैं। सो आई विल से कि फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा। अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए रेडियो ऑल 106.3 FM। मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड, गुड नाइट।

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM

धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।
0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम।

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदा

are listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.